FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 13वीं तिथि तदनुसार 4 जुलाई 2026 सवेरे के ठीक 5:56 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का असर इसका चैनल है एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना

0: निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात 440 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 530 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 421 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 470 अरब डॉलर करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं वंदनवार चिंतन।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार, प्रस्तुत है चिंतन। प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है, प्रकृति ने कभी उस दिल को नहीं दुखाया जिसने उससे प्यार किया। हमें इससे सीखना यह है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए, सदैव प्रकृति का सम्मान और प्रेम करना चाहिए। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 239। 6:45 पर सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 4। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। आठ बजकर 15 मिनट पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम सुबह का केंद्रित होगा संगीतकार रामलाल पर, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, लेखक मनीष वैद्य, वाचक स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 11 बजे चित्रपट संगीत 11:30 पर मैटनी शो। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी सुनिएगा। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे मंजाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए नाटक। नाट्य तरंग में आज नाटक मालविकाग्निमित्र पहला भाग, इसका सुनिएगा

मूल संस्कृत नाटक महाकवि कालिदास, हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतर एवं निर्देशन चिरंजीत। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे विशेष जयमाला, मोहम्मद अजीज पर केंद्रित ये विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनिएगा। पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर केंद्रित ये कार्यक्रम 7 बजे से विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा, 8 में रात 8 बजे सुनिए सुनो कहानी विश्वास का पहला भाग, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, वाचन अमरकांत दुबे, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार भरत व्यास पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे छायागीत, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, 10:30 पर ढलती जाए रात, 11 बजे सुनिए चित्रपट संगीत। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग 239।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपने उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड भाग 239।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए आज सुनिए इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज की चौथी कड़ी लेकर हम फिर उपस्थित हैं। रोनुदा, हमें बताइए हमारे श्रोताओं को कि आपने बांसुरी में कुछ रागों का समावेश किया, वो किन किन रागों का समावेश किया है?
2: बांसुरी में ज्यादातर सुनाई पड़ता था झिंझोटी, यमन, बागेश्वरी, हंसध्वनि और कुछ रागों को ऐसे माना जाता था कि अरे ये तो गाने का राग है। वो बात मुझे हजम नहीं होती थी
1: जी,
2: क्योंकि मैंने गाना सीखा है
1: जी।
2: तो दरबारी कानाड़ा से मैं बहुत प्रभावित था और ऐसी दरबारी मैंने पंडित रविशंकर जी से सुनी कि उनके सितार में और विलायत खान साहब, इन दोनों का अंग अलग है मगर दोनों अलग ढंग से उसमें गहराई लाते हैं। विलायत खान साहब भी, पंडित रविशंकर जी भी
1: जी।
2: और अमीर खान साहब, ये लोग दरबारी के बादशाह हैं। तो दरबारी में मैंने मेहनत करना शुरू किया। मुझे ये कहना है अपने श्रोताओं से कि दरबारी को कण उपकण से दरबारी खड़ा नहीं होगा। दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं।
1: गजब।
2: वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए तो वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: गजब।
2: तो दरबारी कानाड़ा एक राग है, एक राग है जो भीम पलासी से भी पुराना है, राग भीम
1: जी जी,
2: वो भी मैंने बचाया। भीम का तो मेरा रिवरी एल्बम ही है
1: जी।
2: और बागेश्वरी बहुत बसता था मगर रागेश्वरी नहीं बसता था, रागेश्वरी भी मैंने पॉपुलर किया
1: जी।
2: और नटभैरव और

0: ये सब लोग बजाते थे मगर शुद्ध भैरव का हम बसता था
1: जी।
0: तो सेक्रेट स्पेस करके मेरा एक एल्बम है जो कि लंदन से रिलीज हुआ, उसमें शुद्ध भैरव है
1: जी।
0: और चौताल में मैंने बजाया, पखावज की तरह बड़े मुंह का तबला लेके उसके साथ मैंने बजाया, कई प्रयोग मैंने किए
1: जी।
0: और बांसुरी में डेप्थ की कमी दिखती थी, हल्का हल्का लगता था
1: जी जी।
0: और जैसे ही रुद्रवीणा आए तो लगता था बांसुरी तो ठहर ही नहीं रहा है उसके सामने
1: जी।
0: तो वो क्यों नहीं ठहर रहा है, उस पे मैंने मीड़ घसीट और घसीट के साथ साथ आंदोलन
1: जी जी।
0: तो मैं आपको थोड़ा सा दरबारी कानड़ा
1: जी
0: मैं बजा के सुना रहा हूं। और सीधी साधी बंदिश जो बच्चे फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर में सीखते हैं, जब वो संगीत अलंकार की तरफ जाते हैं तो दरबारी भी आ जाता है, विशारद के आगे जब जाने लगते हैं तो दरबारी आ जाता है। तो मैं दरबारी में जो गुरु कृपा करे
1: जी,
0: थोड़ा सा आलाप सुनिए आप, सिर्फ जी, दो तीन फ्रेज
1: जी। हम तो ये कहेंगे पंडित जी कि आप दरबारी कानरा के साथ साथ राग भीम की भी प्रस्तुति आप दें।
0: बहुत सुंदर। मैं भीम और गावती एक ही स्वर है
1: हाँ।
0: मगर उसको भीम क्यों कहा जाता है
1: हाँ।
0: वो बताऊंगा
1: जी।
0: रूणी लोग ऐसा मानते हैं कि राग भीम से ही भीम पलासी निकला
1: जी जी। तो पहले दरबारी कानरा,
0: पहले मैं दरबारी कानरा सुना रहा हूँ।

0: और भीम में ऊपर में जाके कोमलगा लगता है।
1: तो इसमें तीव्र मध्यम था कि मध्यम था?
0: शुद्ध मध्यम,
1: शुद्ध मध्यम,
0: दोनों में शुद्ध मध्यम।
1: अच्छा,
0: गावती में भी और भीम में भी।
1: जी जी,
0: भीम में बस थोड़ा सा फर्क, ये तार सप्तक में जब कोमलगा लगेगा।

0: वाह अद्भुत था। रुनुदा यहाँ पर एक फिल्मी गाना हमें याद आ रहा है, फिल्म बैजू बावरा का, तो क्या ये गाना सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को जिसमें बांसुरी का?
1: अवश्य। इस गाने को रफी साहब ने ऐसा गाया कि कहते हैं ना कि भूतो न भविष्यति।
0: जी
1: न कोई पहले ऐसा गाया न कोई ऐसा गा सकेगा।
0: जी
1: शायद ईश्वर के दरबार में एक ही मोहम्मद रफी उनको बनाना था, एक ही किशोर कुमार बनाना था, एक ही मुकेश बनाना था। तो वो सुनवा देते हैं, दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले।
0: जी

0: बैजू बावरा का ये गाना था मोहम्मद रफी की आवाज में। और अब इस कड़ी को समेटने का वक्त आ गया है, तो इस कड़ी को यहीं समेटते हैं। श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम संगीत सरिता FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम। नमस्कार अलवर।

नमस्कार, अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो मित्र आशीष मालानी। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे विषय के बारे में जो हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारी आर्थिक उन्नति की आधारशिला रहा है। प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है और आज का यह दिन इस महान दर्शन की याद दिलाता है कि सहकारिता केवल एक आर्थिक प्रणाली या कुछ लोगों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें सामूहिक प्रयास, पारस्परिक विश्वास और सबके कल्याण की भावना है।

श्रोताओं, सहकारिता का मूल मंत्र इस सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत पर टिका है कि अकेले हम बहुत कम हासिल कर सकते हैं, लेकिन मिलकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जब समाज का हर वर्ग, चाहे वह आर्थिक रूप से कितना ही कमजोर क्यों न हो, एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होता है, तो एक ऐसी सामूहिक शक्ति का जन्म होता है जो बड़े से बड़े संकट को भी परास्त कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वैश्विक स्तर पर लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि कैसे सहकारी समितियां आत्मनिर्भरता, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं। आज के इस आधुनिक युग में, जहां व्यक्तिगत लाभ, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को सफलता का पैमाना माना जाने लगा है, वहां सहकारिता हमें याद दिलाती है कि समाज का वास्तविक विकास तब तक अधूरा है जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी उन्नति के समान अवसर न मिले। हम सहकारिता के

इतिहास पर दृष्टि डालें तो इसकी जड़ें 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के दौर में मिलती हैं, जब इंग्लैंड में कुछ बुनकरों ने मिलकर पहली आधुनिक सहकारी समिति की स्थापना की थी। समय के साथ यह विचार दुनिया भर में फैला और वर्ष 1895 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सहकारिता की इस अपार क्षमता को पहचानते हुए वर्ष 1992 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता दी है। भारत के संदर्भ में सहकारिता कोई नया और आयातित विचार नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता में आरंभ से ही है, हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग पूर्व से ही रहा है। हमारे गांव में प्राचीन काल में श्रमदान, अनाज साझा करने और मिलकर खेती करने या जल प्रबंध करने की परंपराएं मौजूद रही हैं। आधुनिक भारत में सहकारी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम के साथ हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना था। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देश के नव निर्माण में सहकारिता को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में स्वीकार किया है।

श्रोताओं, भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र में सहकारिता का योगदान इतना विशाल है कि इसके बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। छोटे और सीमांत किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और ऋण की सुविधाएं उचित मूल्यों पर प्राप्त होती हैं। देश के कोने कोने में फैली कृषि ऋण समितियाँ सीधे तौर पर किसानों को उनकी बुआई से लेकर कटाई तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जब हम दुग्ध सहकारिता की बात करते हैं तो गुजरात के आनंद से शुरू हुई श्वेत क्रांति की लहर ने देश के करोड़ों किसानों, विशेषकर महिलाओं की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। इस मॉडल ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि उत्पादक स्वयं ही उत्पाद का मालिक हो तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचता है। आज देश के लाखों गांवों में दुग्ध सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत संबल प्रदान कर रही हैं। कृषि और डेयरी के साथ साथ बैंकिंग, मत्स्य पालन और हथकरघा क्षेत्र में भी सहकारिता ने वित्तीय समावेशन की एक नई इबारत लिखी है। देश का सहकारी बैंकिंग ढांचा समाज के उस वर्ग तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाता है जहां बड़े बड़े वाणिज्यिक बैंकों की पहुंच कठिन होती है। ये बैंक स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और छोटे व्यापारियों और कारीगरों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह मत्स्य सहकारी समितियों ने मछुआरों को आधुनिक नावें, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं प्रदान की हैं, जबकि बुनकर सहकारी समितियों ने पारंपरिक कारीगरों को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखा है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में आवास सहकारी समितियों ने मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और सहयोग के माध्यम से किफायती आशियाने का सपना पूरा किया है।

श्रोताओं, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सहकारिता ने एक अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है। देश भर में चल रही महिला सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के साथ साथ उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास किया है। सहकारिता आंदोलन ने ग्रामीण समाज में असमानता की दीवारों को गिराकर लोगों को एक साथ एक मंच पर बैठकर सामूहिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है। आज के तकनीकी दौर में डिजिटल परिवर्तन ने इस आंदोलन को और अधिक पारदर्शी बना दिया है। रोजगार सृजन, सामुदायिक विकास में सहकारिता की भूमिका किसी वरदान से कम नहीं है। यह क्षेत्र स्थानीय स्तर पर श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर स्थायी आजीविका देता है, जिससे शहरों की ओर होने वाले पलायन में भारी कमी आई है। आज हमारा भारत जब वर्ष 2047 तक एक पूर्णतः विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के निर्माण के महान लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब सहकार से समृद्धि का यह मंत्र इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक समर्पित सहकारिता मंत्रालय के गठन ने इस पूरे क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक ऊर्जा दी है, ताकि देश के प्रत्येक गांव में एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति हो और हमारा ग्रामीण भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके।

श्रोताओं, जब हम मैं के स्थान पर हम की सामूहिक भावना को अपनाएंगे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के बारे में विचार करेंगे, तभी हम एक

समर्थ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के इस अवसर पर हम सभी उन सभी कर्मठ सहकारी कार्यकर्ताओं, किसानों और बुनकरों को नमन करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को सींचा है। आइए सहकार के इस सफर में हम सब एक दूसरे का हाथ थामें और एक नए भारत की मजबूत नींव रखें। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अलवर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं गीता दत्त मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में प्यासा फिल्म से। गीत की रचना है साहिर लुधियानवी की और संगीत है SD बर्मन का।

मजरू सुल्तानपुर के लिखे गीत को अपनी आवाज दी मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने। गाने की धुन तैयार की थी ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस 55 का भी आपने गीत सुना। अब आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं गीता दत्त की ही आवाज में, चंदन फिल्म से। गीत की रचना है राजेंद्र कृष्ण की और संगीत मदन मोहन का।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को अपनी आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने। गाने की धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम दोस्ती का अभी आपने गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत। गीत की रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत SD बर्मन का।

देवता फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार को, गीत की रचना गुलजार की थी और संगीत आरडी बर्मन का। अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार उषा खन्ना की आवाज में जानी मेरा नाम फिल्म का गीत, गीत की रचना है इंदिवर की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: जॉनी मेरा नाम फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनेनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में

0: आतंक रोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय

0: ये अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ, श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल

0: कल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आज आपको सुनवा रहे हैं सोनाली राठौड़ की गाई हुई गजलें। गजल रचना है प्रवीण शाकिर की और संगीत रूप कुमार राठौड़ का।

जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहाँ से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे, तो वहां आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहां आप हमें पाएंगे अपने साथ। ओनली एट न्यूज ऑन AIR।

आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे सोनाली राठौर को। इसी के साथ सुगम संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बातें फिल्मों की, जिसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं फिल्मी गीतों में आगमन का भाव। स्वर व आलेख है अर्चना जैन का। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है शिव कुमार शर्मा।

नमस्कार। फिल्मी गीतों में आने का भाव एक विशेष स्थान रखता है। यह शब्द न केवल किसी के आने का संकेत भर है, बल्कि अपने साथ लाता है भावनाओं की पूरी दुनिया, जिसमें है इंतजार, उम्मीद, खुशी और बेचैनी भी।

जहाँ जिंदगी हमें बहुत से रंग दिखलाती है, वहीं कुछ लोगों का आना केवल एक मुलाकात नहीं होता, बल्कि वे हमारी दुनिया के रंग बदल देते हैं।

0: कभी उनका इंतजार दिल की धड़कनों को तेज कर देता है तो कभी उनके आने की आहट ही चेहरे पे मुस्कान बिखेर देती है।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे

किसी के आने पर महसूस होने वाले प्यार के इस खूबसूरत एहसास से भरे गीत हिंदी सिनेमा की फिल्मों की शान रहे हैं। आज हम सुनेंगे ऐसे ही गीत जो किसी अपने के आने की खुशी, इंतजार और मिलन की प्रीत से सजे हैं।

कभी कभी मन बस यही दुआ करता है कि कोई ऐसा मिले जिसकी मौजूदगी से हर दिन एक नई शुरुआत लगे। ऐसे ही एहसास को समेटे था ये गीत। फिल्म थी खुदगर्ज, जिसे संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने।

कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि जिनकी चाहत में इंसान सब कुछ भूल जाए, बस लगता है कि पलकें खोले या बंद करें बस वो ही नजर आए। मोहब्बत के इसी खूबसूरत

कहते हैं कि पहली मोहब्बत और किसी खास के जीवन में आने का एहसास कुछ अलग ही होता है। समझ नहीं पाता ये दिल कि क्या करे और क्या नहीं। फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर, और इस नगमे को खूबसूरत आवाज दी उदित नारायण ने।

बड़ा ही अजीब है ये प्यार का सिलसिला कि जहाँ किसी का साथ जीवन के उजाले और अंधेरों से जुड़ जाता है। अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया सिलसिला फिल्म का ये जबरदस्त रोमांटिक गाना हर प्यार करने वाला दिल गुनगुनाता है।

ये खूब मिल रहा हिंदी सिनेमा जगत में ख्वाबों ख्यालों में अपने प्रेमी से मिलने का, जहां सपनों में दिल किसी ऐसे चेहरे को संजोता है जिसके आने से

ये खूब मिल रहा हिंदी सिनेमा जगत में ख्वाबों ख्यालों में अपने प्रेमी से मिलने का, जहाँ सपनों में दिल किसी ऐसे चेहरे को संजोता है जिसके आने से जिंदगी में खुशियाँ भर जाए। प्यार के इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता ये गीत।

क्या खूब एहसास होता है ये प्यार का, जहाँ कोई रिश्ता समय और दूरियों से भी बड़ा हो जाता है और फिर चाहे उसके इंतजार में पूरी उम्र क्यों ना निकल जाए।

कभी कभी किसी का जिंदगी में आना ऐसा होता है कि जिससे मिलकर जीने का मजा आने लगता है, नहीं मालूम होता कि हमें क्या हुआ है। ऐसा ही मस्ती भरा गीत रहा फिल्म जब वी मेट का, जिसे खूबसूरत आवाज दी श्रेया घोषाल ने और मदमस्त संगीत था प्रीतम का।

प्यार में किसी से मिलने के एहसास का भी क्या कहना कि होश भी गवा बैठे और पता भी ना चले। ऐसा ही गीत रहा साल 1999 में आई फिल्म सिर्फ तुम का, जिसे बाद में 2018 की फिल्म सत्यमेव जयते के लिए भी रिमिक्स किया गया।

हमारी हिंदी फिल्मों में किसी के जिंदगी में आने के एहसास को सुंदर गीतों और संगीत में ढालने का ये सिलसिला साल दर साल अलग अलग अंदाजों में बाखूबी देखा गया, जहां हर खुशनुमा दिल की गहराइयों में समा चुका था सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत।

कहते हैं दिल को किसी के आने की खबर अक्सर पहले ही हो जाती है। बस अपने प्रेमी के लिए दिल में थोड़ी जगह मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। सुनिए मशहूर गायक के द्वारा गाया गया ये गीत।

कुछ लोग जिंदगी में आकर जीवन का हिस्सा ही नहीं बनते, बल्कि उन्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे रब से सब मिल गया।

दिल में किसी का आना हुआ पर शोर नहीं, ये वो एहसास है जिस पे किसी का जोर नहीं। ऐसा ही रूहानी गीत रहा फिल्म तेरे नाल लव हो गया का।

फिल्मी गीतों की यही तो खूबसूरती है कि वे हमारे अनकहे जज्बातों को सुर और शब्द दे देते हैं। आज प्यार के इन्हीं अनकहे एहसासों से भरे नगमों ने जरूर आपके भी दिल को छुआ होगा। यहाँ लेख और स्वर के साथ आपकी हम सफर रही, मैं अर्चना जैन।

सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बातें फिल्मों की। अगले हफ्ते होगी मुलाकात प्यार के कुछ और रंगों से भरे नगमों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: डीटीएच चैनल पर सवेरे के 9 बजे

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर, देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलनीनो के प्रभावों की समीक्षा की, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और राज्य को विभिन्न सौगात देंगे। वे जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पचपदरा में एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिससे देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के आधारशिला रखे जाने और जोधपुर एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि नए टर्मिनल को लेकर वहां लोगों में बहुत उत्साह है। इसके बनने से अधिक पर्यटक जोधपुर आएंगे, जिससे स्थानीय व्यवस्था मजबूत होगी।
2: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर हवाई संपर्क से देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे मेहरानगढ़, उम्मेद भवन, ओसिया और थार जैसे क्षेत्र पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। होटल, हस्तशिल्प, परिवहन, रेस्तरा और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आधुनिक एयरपोर्ट निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति दे

0: करेगा जिससे जोधपुर क्षेत्रीय विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल पचपदरा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिफाइनरी का इंतजार लंबे समय से था जो अब पूरा होने जा रहा है।
2: काफी समय से इंतजार था रिफाइनरी का, रिफाइनरी का भी उद्घाटन होने वाला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 17 जनवरी 2018 में इसका शिलान्यास किया और उद्घाटन भी उसका वही कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है।
1: मुख्यमंत्री ने कल पचपदरा स्थित मंडापुरा में HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का भी उद्घाटन किया। सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिरोही संवाददाता।
3: कार्यक्रम में देश भर से विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ तथा नीति निर्माण से जुड़े अधिकारी भाग लेंगे। चिंतन शिविर में न्याय प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रणाली, नागरिकों को सरल एवं सुलभ कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने, संस्थागत सुधार तथा सुशासन को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून आगे बढ़ रहा है और उसने ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पहुंच बना ली है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। अगले 2-3 दिन में इसके शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने आज जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी को छोड़कर पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। इसके अलावा कुछ दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर शामिल हैं। यहां भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच जयपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं। सुबह कुछ स्थानों पर छिटपुट बरसात भी हुई। करौली में हल्की फुहारों ने जिले का मौसम खुशनुमा बना दिया है। भरतपुर और बांसवाड़ा में कल देर रात से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। जालौर में कल रात हवा के साथ हल्की बरसात हुई। सिरोही के पिंडवाड़ा, आबू रोड, स्वरूपगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल देर शाम घंटे भर तक झमाझम बादल बरसे। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि वहां 2 दिन से चल रही बारिश से लगभग सभी इलाके तरबतर हैं।
4: राजस्थान में मानसून के प्रवेश के बाद दक्षिणी राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। 2 दिनों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। वहीं बारिश की वजह से खेत भी पानी से लबालब हो गए हैं। वहीं नदी नालों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। बारिश के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और किसान अब खेती बाड़ी में जुट गए हैं। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति और उसके संभावित प्रभावों पर समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने संबंधित मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को उपयुक्त फसल बुवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जलाशयों और भूजल स्तर की निगरानी, पशु चारे की उपलब्धता तथा कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के 30वें संस्करण का आयोजन कल जयपुर में किया गया। कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। युवाओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाते हुए संसद की कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत की आधारशिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर। देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय

0: विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के प्रभावों की समीक्षा की, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजों में आप सुन रहे थे रूबरू फिल्म का गीत। सोनिक सेन ने इस गीत को लिखा था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बेख्याल हो कर यूं चूलिया किसी ने।
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
2: जाने इन नागों पिया करते हूँ।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम।

आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक लिया जाए, उसके बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

फिर से बहुत स्वागत आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सोनू निगम की आवाज में और साथियों की आवाजों में सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, अमाल मलिक और प्रीतम ने मिलकर इस गीत की धुन बनाई थी। दोस्तों आज है 4 जुलाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता को बढ़ावा देना और ये बताना कि मिलजुल कर काम करने से समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन अधिक सशक्त बनता है। एक अकेला इंसान जिस काम को थोड़ी अधिक समय में कर सकता है, वही काम साथ मिलकर कम समय में किया जा सकता है और साथ मिलकर सफलता तय करना ये बताना है। जब व्यक्ति अपने हित के साथ समाज के हित को भी महत्व देता है तब विकास का रास्ता मजबूत होता है। आइए संकल्प लें, सहयोग और साझेदारी की इस भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वर्ष 2026 की थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। ये थीम समाज में न्याय और एकजुटता को बढ़ावा देने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। सुनते हैं हम ये गाना।

0: भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गदर टू फिल्म का गीत आप उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से सजाया था मिथुन ने। आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं तक, आपसे आज्ञा चाहते हैं। आज का कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक कम चर्चित संगीतकार की बातें।

बचपन से ही उन्हें शहनाई बजाने का शौक था। शहनाई और बांसुरी शौकिया तौर पर वो बजाया करते थे। मशहूर संगीतकार राम गांगुली के भाई कमल ने रामलाल की बांसुरी और शहनाई सुनी तो उन्हें बनारस से बंबई ले आए। सन 1944 में रामलाल समंदर के किनारे वाले इस शहर मुंबई में आए। 14 साल तक वो संगीतकार राम गांगुली के सहायक रहे। राम गांगुली को राज कपूर की पहली फिल्म आग मिली। 1948 में राज कपूर की फिल्म आग में संगीतकार राम गांगुली के लिए कई गानों में रामलाल ने बांसुरी और शहनाई बजाई।

रामलाल ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर में 80 रुपए की तनख्वाह पर शहनाई वादक की नौकरी कर ली थी। पृथ्वी थिएटर में एक नाटक चल रहा था, शकुंतला। इस नाटक की संगीत टोली में काम करते हुए रामलाल का परिचय राज कपूर से हुआ था। रामलाल बांसुरी और शहनाई बजाया करते थे। इसी दौरान वी शांताराम ने रामलाल को राजकमल स्टूडियोज में काम करने की पेशकश की। तनख्वाह ज्यादा थी तो रामलाल राजकमल स्टूडियोज में आ गए और बन गए शहनाई और बांसुरी वादक। वी शांताराम की कई फिल्मों में उन्होंने शहनाई और बांसुरी बजाई है, जैसे फिल्म सुबह का तारा।

इसी दौरान राजकमल स्टूडियोज यानी वी शांताराम ने रामलाल को बाहर की फिल्में करने की इजाजत भी दे दी। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में रामलाल को पहला मौका मिला पी एल संतोषी की फिल्म तांगावाला में। पी एल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी एक गीतकार और निर्माता, आज के जमाने के निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता। फिल्म तांगावाला में मुख्य भूमिका में थे राज कपूर और वैजयंती माला। रामलाल का करियर शुरू हो रहा था लेकिन अफसोस ये फिल्म बंद हो गई। अब रामलाल बतौर बांसुरी और शहनाई वादक फिल्म उद्योग में अपना काम करते रहे। बतौर संगीतकार उनकी ख्याति अभी बननी बाकी थी लेकिन बतौर बांसुरी और शहनाई वादक उनकी बहुत ख्याति थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी शहनाई के सुर छेड़े, जैसे फिल्म मुगले आजम।

यानी 1952 में रामलाल को एक बार फिर से स्वतंत्र संगीतकार बनने का मौका मिला। फिल्म थी हुस्न बानो। इस फिल्म के गाने लिखे थे साहिर चांदपुरी ने। इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

सन 1957 में आई फिल्म नागलोक। भरत व्यास का लिखा ये बेमिसाल गाना इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी ने गाया था। संगीत रामलाल का था।

0: बोले ऐसे अंगे चंद्र बाल नाथ बोले।
1: सन 1960 में आई माया मच्छिंद्र, इस फिल्म के गाने पंडित मधुर ने लिखे थे। ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक मधुर गीत।

अंत प्यारे लाल। इसके बाद रामलाल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। वी शांताराम ने अपनी फिल्म सेहरा में संगीत देने के लिए रामलाल को चुना और इस फिल्म के सारे गाने बेमिसाल बने। जा, जा, जा।

0: संगीतकार रामलाल बरसों पहले विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी।
1: शांताराम बापू हमको बुलाए, वहीं से फिर 200 रुपया शुरू हुआ। फिर बसंत देसाई साहब के साथ बाहर काम भी करना शुरू हुआ, पिक्चर में, तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगा। हमको 150 मिलता था पृथ्वी थिएटर्स में और शंकर जी को 120 मिलता था और जयकिशन जी को 80 रुपया मिलता था। कहूँ वो लोग बाद में आए थे। टांगा वाला पीएल संतोषी साहब ने हमको दिया था 1950 में। वो हमारे गुरु थे, टांगा वाला राज कपूर बजंती माला। उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी, उसके गाने रिकॉर्ड हुए। उस गाने से हुसन मानू बनी, वो गाना खरीद कर हुसन मानू बनाए प्रोड्यूसर।
2: गाना कौन सा था?
1: प्यार करने का आया जमाना, अब चलेगा न कोई बहाना, हो प्यार करना पड़ेगा। लता भाई ने गाया था।
0: वी शांताराम ने इसके बाद बनाई गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में भी संगीतकार के तौर पर रामलाल को चुना गया। गीत गाया पत्थरों ने एक बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए जितेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हीरोइन थी वी शांताराम की बेटी राजश्री। इस फिल्म का आशा भोसले का गाया ये गाना सुनिए।

पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने एक और कमाल किया, उन्होंने राजी किया जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर को एक फिल्मी गाना गाने के लिए, और ये गाना कालजयी बन गया। राग दुर्गा पर आधारित था ये गाना।

0: गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने सी एच आत्मा से दो गाने गवाए थे। एक गाना था ये
1: मंद में तले हरी धुके दो फूल खिल रहे हैं,
0: और सी एच आत्मा का इस फिल्म में गाया दूसरा गाना था ये
1: एक पल

दिलचस्प बात यह है कि रामलाल जी ने कन्नड़ फिल्मों में रामलाल सेहरा के नाम से संगीत दिया था। उनकी कुछ कन्नड़ फिल्में हैं बलुआ प्रपन्नय मजोड़ी, दाहा और डोमरी कृष्णा। वैसे आपको बता दें कि रामलाल जी को रामलाल हीरा पन्ना कहा जाता था और इसकी वजह भी बड़ी मजेदार थी। रामलाल जी एक कान में हीरा पहनते और एक कान में पन्ना, इसलिए वो बन गए थे रामलाल हीरा पन्ना। रामलाल जी की शहनाई कई गानों में सुनाई पड़ती है, जैसे फिल्म परिणीता का ये गाना।

0: बतौर संगीतकार रामलाल जी का करियर आगे नहीं बढ़ पाया, वो बतौर वादक फिल्म उद्योग में काम करते रहे। जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा था। रामलाल जी के जीवन का उत्तरार्ध बहुत मुश्किल में बीता। धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। एक दिन उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में फोन किया और कहा, मैं संगीतकार रामलाल बोल रहा हूं। इस तरह से उन्हें विविध भारती में आमंत्रित किया गया और उनका ये अनमोल इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ।
1: नहीं मलाल किस बात का, उस वक्त काम होता था, पैसा कम मिलता था, बहुत आनंद था। अब अभी तो हजारों मिलते हैं, मगर उस वक्त इतना मिलकर भी कुछ खिसे में पैसा रहता था। हमारे जो जगह दूसरा आदमी होता तो भाग जाता मैदान छोड़कर।
0: 4 जुलाई 2004, बारिश के दिन, संगीत की दुनिया का ये पंछी चुपचाप उड़ गया। अखबारों में छोटी सी खबर भी ना छपी। रामलाल जी गुमनामी के अंधेरों में चुपचाप दुनिया छोड़कर चले गए। आज भी गूंजते हैं रामलाल जी के गाने और संगीत के कदरदान उन्हें याद किया करते हैं। फिल्मी गानों को सुने तो हम उन गानों को रचने वाले कलाकारों को जरूर याद करें, गीतकारों को, संगीतकारों को और गायकों को। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन कलाकारों के लिए। रामलाल जी को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार रामलाल पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह ने की।
2: आज के फनकार।

0: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहाँ से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे तो वहां आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहां आप हमें पाएंगे अपने साथ, ओनली एट न्यूज ऑन AIR।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। आई सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहां पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती? किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका।

नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी मां को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां मां बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरी करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहां वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहां मुझ पाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आंच होती है।

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्तान

के लुटता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते, उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहां खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आंच महसूस करती और इस आंच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहां। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई।

धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहां। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फली रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहां होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे

उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरजते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जुड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आंच थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा। वे प्रेम में थे या उनके साथ

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को? मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब? कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है। कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़ी ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा

0: करती है। कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। उनके पास बातों का खजाना था, कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी। पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था। उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था। ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है? सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका? प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ? आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यही वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने

डर प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर की शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी वहीं से, जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान, सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? मना कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी, जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपने राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं,

लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी, एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही, फिर कहानी में लौट आई, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी, उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की।

0: FMN 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: the best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट. आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप.
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर. आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम.

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था कलाबाज। जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ।

लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में

आपको सुनवा रहे हैं खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो चिलचिलाती गर्मी

से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है, है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानव मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़ी रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में इन काले काले बादलों को स्थान देने लगते हैं। तो आज मैटिनी शो में उन्हीं कारे कारे बदरवा पर लिखे कुछ गीत हम लेकर आए हैं।

आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्य बद्रा पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। और जब बात कार्य बद्रा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थी राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए, उन्हीं शुरुआती बेहतरीन गानों में से एक ये भी गीत है। फिल्म का नाम है शिकस्त और इसके गीतकार हैं शैलेंद्र।

इन बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घूमड़ने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। गिर रहे घूमड़ कर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर, शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर। यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है, 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारी बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर

की आवाज है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की ही बात चल रही है, बादल एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कभी ये दूर रहने वाले प्रियतम को संदेश पहुंचाने वाले दूत का प्रतीक होते हैं, तो कभी किसी बिछड़े प्रेमी के गहरे दुख को दर्शाते हैं, कभी प्रेमिका के घने लहराते बालों की तुलना आकाश के काले

भूरे बादलों से हम करते हैं तो कभी कुछ और। ये बादल अशांत, चंचल, शरारती और कभी कभी निर्मम भी हो जाते हैं और बहुत सारे गीतों में इनको याद किया जाता है, कभी बादल के रूप में, कभी बदरा के रूप में, कभी घटा के रूप में, कभी मेघा के रूप में, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाव वही होता है कि हम जब किसी को याद करते हैं तो लगता है कि ये बादल शायद हमारे लिए मेघदूत का काम करेंगे। एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। ये फिल्म है धूल का फूल।

दोस्तों, बादल केवल बारिश का पानी ही नहीं लाते हैं, बल्कि ये आसमान के कैनवास पर प्रकृति द्वारा उकेरी गई एक ऐसी कविता होती है जो पल पल अपना रंग और रूप बदलती रहती है। बादल हमें कभी किसी रूप में नजर आते हैं, कभी किसी आकृति में, और हम जब बादलों को बहुत ही गौर से देखते हैं तो न जाने कैसी कैसी सुंदर आकृतियां बन जाती हैं, है ना। तो चलिए फिल्म दिल दे के देखो, जो कि 1959 की फिल्म है, उसका एक सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बेहद रोमांटिक और मनमोहक गीत है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी है और संगीतकार उषा खन्ना है। और इस गाने में बारिश के मौसम की प्राकृतिक सुंदरता और नायिका की भावनाओं के बीच का संबंध गीतकार ने लिखा है। यानी बोल जैसे हैं, मेघारे बोले घनन घनन और पवन चले सनन सनन, यानी बारिश के आने और ठंडी हवाओं के चलने का वर्णन गीतकार ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गीत में किया है, जो वातावरण में एक मादक और खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं।

और जैसे ही मौसम सुहावना होता है, नायिका का मन जियारा मोरा डोले अपने प्रियतम के लिए पुकारता है और उसका जिया मचलने लगता है। यानी हम भी कह सकते हैं कि ये गीत नायिका के उस मनभावन इंतजार और अपने प्रेमी के प्रति उमड़ते प्यार को दर्शाने वाला बहुत ही प्यारा गीत है, जो बारिश के मौसम में और गहरे काले बादल के छा जाने पर ये गीत भी उतना ही गहरा हो जाता है।

तो आज हमने उन गीतों को लिया जो हमें भी मोह लेते हैं और हमारे गीतकारों को भी, यानी आसमान में छाए कारे बदरा। तो कार्यक्रम के अंत में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बहाना का गीत जारे बदरा बैरीजा। एक बेहद खूबसूरत और भावुक मेरा गीत है ये, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है, और आवाज यानी मधुर आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत में नायिका बादलों से बात कर रही है और अपने प्रीतम के लिए, अपने सांवरिया के लिए अपनी तड़प बता रही है, अपने इंतजार को बता रही है। और नायिका बादलों को अपना दुश्मन कहती है और कहती है क्योंकि सावन का मौसम और बादलों की गड़गड़ाहट उसके अकेलेपन को, उसके विरह को और बढ़ा रही है। और ऐसे में वो बादलों को कोसने के साथ साथ उनसे विनती भी करती है कि वे उसके प्रियतम के पास जाएं और उनकी कोई खबर या संदेश लेकर आएं। तो वो कहती भी है कि पिया के दर्शन के बिना उसका मन तड़प रहा है, पी के दरस को जियरा तरसे, और उसका इंतजार यानी उसकी आंखें थक गई है, बाट तकत मोरी हारी नजरिया। बहुत ही खूबसूरत गीत उनके भावों के साथ नायिका के, जो कि बादलों के जरिए अपने प्रिय के पास अपना प्रेम संदेश और अपने रो रो कर बीते दिनों का हाल अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

तो ये था आज का मैटिनी शो। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी

0: बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर लिस्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: मीना कपूर की आवाज को अभी आपने फिल्म आंखें में सुना, पंडित भरतव्यास की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

0: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप है दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहां से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे, तो वहां आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहां आप हमें पाएंगे अपने साथ। ओनली एट न्यूज ऑन AIR।
0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: वैसे करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस
1: जी
0: सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
2: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: पंडित शिवराम के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।
4: या।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

गोरी गोरी गोरी गोरी कमल किशोरी चंचल चकोरी एक गाँव की छोरी मैं हूँ नवल नवेली अलबेली नार समझाए थके तुहे बार बार मन छुई मुई करू कान ग

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: की फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों के, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृह लक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना। पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है सतीश भाटिया ने।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद

0: इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने पंडित भरत व्यास को याद किया था।
1: प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंच गए हैं। वे अब से कुछ देर बाद 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विदेश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं, जोधपुर रिंग रोड के एक हिस्से सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये नया टर्मिनल भवन हर साल 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजना से अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा तथा 100 नए हवाई अड्डों और 20 हेलीपोर्ट का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा और राजस्थान में विमानन क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।
2: आप अभी देख रहे हैं उदयपुर में नया टर्मिनल अभी बनने के लिए तैयार है। कोटा में एक नया

0: कल हम एयरपोर्ट ही बना रहे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे और काफी श्री गंगानगर है, जैसे हमने राज्य सरकार से भी काफी चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं राजस्थान में जहाँ पे नए एयरपोर्ट की संभावना है, तो वो सबको भी आगे 10 साल में किस तरह से उसको भी सच करें, किस तरह से वहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाए, उस पर भी एक कोशिश हमारी चलती रही।
1: सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हो रहे हैं। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप आधुनिक, प्रभावी और नागरिक केंद्र विधिक व्यवस्था के निर्माण पर विचार विमर्श होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। इन सभी को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और हमलों की योजना बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्तता के कारण आतंकवादी घोषित किया गया है। यूपीए अधिनियम में संशोधन के तहत केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया है। संशोधन लागू होने के बाद से सरकार ने 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। राजस्थान पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के पहले ही दिन प्रदेश भर में 18,477 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 7,104, तेज गति से वाहन चलाने वाले 5,000 से अधिक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं अवैध पार्किंग करने वाले और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तो हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं, www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर जिन्होंने अपने विचार लिख दिए हैं, वे तो समझ ही गए हैं कि आज का विषय गजलें हैं और आज हमने क्या टेक्स्ट आपके लिए लिखा है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आज का टेक्स्ट है, हमारी फिल्मों में गजलें केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने का सशक्त माध्यम रही हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। जब संवाद ना काफी होते हैं तब गजलें अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई से पर्दे पर उतारती है। तो आज सुरीला सफर इन्हीं बेहतरीन पुरानी गजलों के साथ, बताइए आज कौन कौन सी चुनिंदा गजल आपके लिए पेश है। पेशी खिदमत है कार्यक्रम की ये पहली गजल। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग अलग होता है। जहां महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसके जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफ आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है, जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के

अनूठे संगम से होता है जो अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसे गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं लोग मानते हैं कि इसने रब नहीं होता, मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार शकील बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खय्याम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गजल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आंखों पर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गजलें चुनी है जिसमें 5 शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गजल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गजल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूँ। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आपकी नजर में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारी जो फिल्मी गजलें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियां जिसने आपको आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियां हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियां बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सू लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रू लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश की हिंदी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें हिंदी फिल्मों में पेश की गई है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा है विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी के गजल सुन रंग और नूर की सौगात के से पेश करूं, मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विधा की कसक है, दर्द की सच्चाई है और अंतर्मन की अनकही पीड़ा। संगीत भावुकता और शब्दों की सुंदर लय से सजी गजल हृदय को स्पर्श करती है। गजल केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये मन की उन भावनाओं का दर्पण है जिन्हें अक्सर कह पाना संभव नहीं होता। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलें जो हैं फिल्मों में केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वो तुरंत हमें ज्वाइन करें। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुल गुलाम मोहम्मद साहब का यानी

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी, यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी, आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वो जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में एक गजल अपने ही पूरे शबाब के साथ फिजाओं में तैरती है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है। ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है। गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है, भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने। तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे

आप समझ पाए। तो आप अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं, चलिए आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहां गजल है वहां ये भाव होते ही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरोकर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुंचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से है वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर, इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबां होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत से गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं। साहिर, लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज के सुरीले सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को, दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं, पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लू वाली। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गजल है।

ललित महमूद की आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गजल में हमें नजर आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसी ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गजल को रचा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम अब आपके जो उत्तर हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है। कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलहत अजीज की गायी जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आए, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं, राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लता जी, तलत अजीज की, आवाज बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ, काफिया, मिसरा, गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी।

गोपाल दास नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर हूं इस गजल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गजल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गजल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गजल, न किसी की आंख का नूर हूं, ये बहुत ही प्यारी गजल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं

देखते हैं कि एक गैर फिल्मी गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ये गजल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गजल न किसी की आंख का नूर हूँ, ये बहुत ही प्यारी गजल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिश्वास का संगीत।

अदालत महमूद को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में। हम आपको बता दें ये 1950 की फिल्म थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियां हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गजल का जिक्र किया है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात की, चंदन दास की जो गजल गार फिल्म में गजल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्णप्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी, ये कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गजल पहले विशिष्ट लोगों की महफिल में ही गाई जाती थी और आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम है मंदाकिनी जी जहां

फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गजल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है। इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे गजलें अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गजल फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आरा फिल्म की तेरी आंख के आंसू पी जाए ऐ मेरी तकदीर, ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गजल की ये गजल मैं आपको सुनवा रही हूँ। बोल है नगमा और शेर की बारात किसे पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम फिल्म, इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इसे हम गजल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गजल नहीं है। अगर मतलब आपने कभी इसके बोलों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात, जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गजल की शर्तों में आती है। ये गजल उस नियम, वो दायरा जो है गजल का, उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गजल, फिल्म का नाम गजल, आवाज लता मंगेशकर की, मदन मोहन की धुन।

नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूंगी बहादुर शाह जफर की पंक्तियां मुझे आज भी अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुए यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आंखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियां, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गजल क्या है आपने उसको महसूस, आज के इस कार्यक्रम को, इस सफर को महसूस करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल

0: परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से

0: केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ

0: में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य

0: जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

की दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट

0: डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, टेट्रोजोल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लेखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन और हमारा गाना बन गया।

0: सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का दो गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।
1: Yeah.

0: की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और

0: लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

请查查，查查。

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने की ख्वाहिशमंद है आपसे भी। ये है सदर नागपुर से कमल गोलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलछा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं। आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, हर्षेल रंभाड़े, वैष्णवी रंभाड़े, जानवी रंभाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं। ये इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा सोमनाथ का।

लिया। ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का, और ये है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंडिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हर्षद जयपुरी है, संगीतकार शंकर जयकिशन है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने, ये है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण।

यह आवाज थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाही गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गोलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गोलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दो गाना।

बिछड़े ना हम।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: दोस्तों आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा की राज

0: महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक छलक पाने को तरस रहे थे।
1: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सके।
0: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना बैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि

0: सर्पराज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
1: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
2: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
1: ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीर सेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञ सेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक।
0: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीतशाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राजप्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: मालविका, अब तू जा।
1: ठहरो ठहरो ठहरो, अभी मैंने कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
2: महाराज जी

0: हरकत तो
1: मैं क्या पूछूंगी। मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
2: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
1: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ अरे गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
1: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
2: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
1: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दूसरे का भाई यही समझ कर दे रहा हूँ।
1: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अभी से अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
4: जो आज्ञा।
3: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
2: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
3: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
1: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
2: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
1: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: अरे अब तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्य का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्य पुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
4: महाराज सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र सच पूछो तो विधाता ने सहज सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया। मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बांध ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवाई की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
4: महाराज कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: घबराहट क्यों न हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसे बसी है कि रंगराज की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम सोचा कोई उपाय?
4: उपाय उपाय हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
2: बकुला वलिका।

0: समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें माला माल कर देंगे।
1: गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ,
2: अरे मालविका तुम आ गई।
3: दासी सेवा में उपस्थित है दिली। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
2: इस दुष्ट गौतम के नखत बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती, और मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
3: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे सुयोग्य समझा।
2: तो तुम बकुला बालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
3: जो आज्ञा।
2: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
4: योगी जी महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए।
5: तुम्हें देखे तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको निभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
6: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा।

0: ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वो उतने ही कठोर होते हैं।
1: महाराज तुम एक धीरे से काम लीजिए, आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
0: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा, आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
1: चलिए झूलाग्रह की ओर।
0: झूलाग्रह की ओर?
1: हाँ हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वो वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमोदवन के झूलाग्रह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
0: हाँ मान तो ली थी, परंतु
1: अरे कैसी अचरज की बात है कि
0: क्या हुआ।
1: उधर देखिए, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है।
0: क्या क्या
1: मालिका रही है
0: और क्या। तो समझो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य कोई नदी होगी, वैसे ही यह जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
1: लीजिए वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
0: ये सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसमें इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंडलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों।
1: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा।
0: तुमको ऐसा ही सुझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
1: लेकिन महाराज अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
0: मित्र हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।

0: दुर्लभ प्रिय है। हृदय छोड़ दे तू मिलने की आशा, अरे हृदय तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। तुझे यूं सताकर तुझे क्या मिल रहा है?
1: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक धार नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है?
2: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायक का बकरा बल का उसके

0: होता है, हमार जिस तक अपनी पहुंची है। तुझे यूँ सदा कर तुझे क्या मिल रहा है?
1: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक धार नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है?
2: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायक का बकला बल का उसके पास पहुंच गई।
1: अरे, ये बकला बल का सार श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काले को लाई है?
2: अरे, आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
1: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
2: आप नहीं तो क्या आपके लिए?

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। ले सखी, हृदय ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना। वाह तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो। अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ
1: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मैंने महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई कॉपले फूट आई हो।
2: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
1: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य है, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य है।
2: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
1: मन चाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे नेपोनिका, आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
3: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, आइए उन्हें ढूंढे।
0: अरे मदरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
3: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेमी लता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
3: अरे ये क्या
0: स्वामी, क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
3: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है
3: देवी, तुम एक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर जम रही है।
0: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
3: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
3: तो क्या महाराज को ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं पड़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये सात श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी चल जाता है।

0: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
1: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी।
0: अच्छी सखी,
1: ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
0: सच सच कह दो,
2: ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
0: सच?
1: बड़े भाग्यवान हो,
0: इतने पर भी तुम्हें तनिक भी कमल नहीं।
1: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योगी तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य कमल हो गया है।
0: हाँ
1: लो, तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
0: आहा,
1: ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर तो।
0: मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
1: सखी, ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
0: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हो।
1: हाँ, मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए, मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
0: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
1: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है।
0: हाँ,
1: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
0: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
1: सच?
0: फिर सखी, उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
1: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो, इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दू।
0: लो, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो।
1: अरे क्या सोच रही हो?
0: सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
1: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
3: वाह बकुलावली का, वाह मित्र। बकुलावली का ने बड़ी चतुराई से मालिका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
4: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
3: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ये अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
4: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
0: आई गौतम, महाराज भी
4: क्यों रही बकुलावली का? सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
0: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं।
3: अच्छा तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
4: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
3: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
0: सखी, महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
1: अरे पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
3: भद्री, तुम जा सकती हो परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
5: मालविकाग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
3: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती
2: है। बिल्कुल।
3: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडी कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
2: हाँ हाँ।
3: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
2: बिल्कुल।
3: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
2: हाँ।
3: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है क्योंकि दोनों गाने वही थे।
2: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, थी कि चुनरिया पर ही आपको गीत लिखा?
3: नहीं, मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई, हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
2: आपस का
3: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: गया। उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? मैं हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग।
1: हाँ।
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: को वो जगह ही रहता था।
1: अरे
0: और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के। हाँ ना भाई साहब, इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं। तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, क्या रे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं।
1: हाँ?
0: इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ?
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया। और ये उनका बहुत बड़ापन था, उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया। और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया। और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है, आ जाना।
1: अरे वाह।
0: तो इतने ग्रेट थे, वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो। देखिए रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5000 चुनरिया तो नहीं है।
1: हाँ।
0: और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी

0: रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल,
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में लाके दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए हैं,
1: भूख
0: लगी होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत
0: खूब। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ।
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा।
0: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही मतलब

0: मैं समझता हूं कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे 5 गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं। देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया। और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
1: अच्छा धरती की हलचल।
0: हलचल और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का। और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह संगीतकार विजू।
0: पहली बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था। तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लक्की शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। लक्की सब में है ना।
1: हाँ।
0: दावा नहीं कर सकते
1: जी,
0: अपन
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लक्की है। मेरा ठीक है।
1: ओहो।
0: मेरे लिए भी लक्की हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है
1: जी।
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ।
0: मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था। तो ये इस गाने की कहानी है। बहुत ही खूबसूरत गाना था
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बना।
0: और मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया। उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें ना जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा और हम लोग काम करेंगे
1: जी।
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है।
1: अच्छा।
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था मेरे को एक दिन बोले गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे गाड़ी में बैठे हुए। तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ

0: मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त।
0: बर्दाश्त, लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के कितने हैं?
1: बहुत।
0: तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है।
0: फिर मैंने दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता, फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। तो, क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है, और क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलते थे यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल
0: मिलता
1: नहीं
0: है।
1: है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहां एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को
1: हाँ,
0: क्रिएट कर रहे
1: लेकिन
0: हैं।
1: नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंद्र जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ
1: मैं
0: जाऊंगा,
1: आ
0: वक्त
1: जाऊंगा, तब
0: दूंगा।
1: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ मैं बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब वो
0: सोनू निगम
1: गाना
0: जी के पिताजी।
1: जी वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहां कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन
0: मिला।
1: मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में। एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: उसमें कोई
0: बहुत
1: बात
0: बड़ी बात
1: नहीं।
0: आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए,
1: जी
0: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
1: नहीं नहीं
0: आपने, और
1: नहीं नहीं
0: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना?
1: हाँ जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है? अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूं मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
1: नहीं
0: आपके
1: नहीं
0: गीतों को?
1: नहीं नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था। तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा जहां भी जाता हूं तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो। तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
0: वो लिख
1: उसको
0: लेता
1: ले
0: है।
1: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
0: अच्छा
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
0: अच्छा
1: हमने फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है।
0: हाँ
1: तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखोगे अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने मैंने कहा प्यारे भाई

0: मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
1: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल लिखवा देते,
1: सिचुएशन बतानी पड़ती है।
0: हाँ, जो भी सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग
0: में मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है, मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, संगीतकार है, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। एक दो बार की तो ठीक है, फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा,
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद किया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: जी, मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए। ये है आपका तेरी चुनरी बनो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी।
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणे का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है, वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता। रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से।
0: ओडली
1: म्यूजिक,
0: चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
0: अच्छा।
1: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र भी आप
1: जिक्र किया। तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं।
0: अच्छा।
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कभी बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूँ, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूँ, जो है वो है।
0: जी जी।
1: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या।
0: हाँ।
1: पैसा तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा।
0: अद्भुत,
1: ये बहुत ही अद्भुत। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदरकांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया क्योंकि पैसा नहीं है ना, सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर, ऐसा कोई सिंगर या

0: वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम।
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेने
0: मैं कुछ
1: वाला।
0: नहीं लेने वाला।
1: बहुत बड़ी बात सर,
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं भावुक हो गई हूँ।
0: नहीं
1: एक
0: नहीं
1: गाना पहले सुन लेते
0: एक
1: हैं।
0: गाना हम लोग सुनते हैं। मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: जिंदगी बदल दी।
1: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो मैं, लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत ये है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
2: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना
1: नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते गाना जब लिख लिया मैंने, हिमेश भाई ने बना भी दिया, तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ नए गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
2: बहुत सुंदर
1: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
2: नहीं, आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
1: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना।
2: जी,
1: तो
2: जी,
1: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
2: बहुत सुंदर,
1: और वो हो गया।
2: सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है, फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को, क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
1: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि

0: जी
1: तो
0: जी
1: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं,
0: बहुत सुंदर
1: और वो
0: कर
1: हो
0: रहे
1: गया।
0: हैं सुधाकर जी। गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
1: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करोगे एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं,
0: अच्छा
1: बट
0: लेकिन
1: AI जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
0: बिल्कुल सबसे बड़ी
1: वो
0: बात है।
1: कहानी नहीं ला पाएगा,
0: वो साउंड कर
1: टेक्निकली वो
0: देगा।
1: साउंड कर देगा लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
0: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
1: मैं बिल्कुल तैयार हूं, तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहां पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फुहड़ पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
0: बहुत प्यारे तरीके,
1: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
0: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, 5 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और
1: जी जी।
0: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया। जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
0: वो कालजयी हो गया।
1: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
0: जी, जी।
1: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
0: जी
1: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
0: बिल्कुल।
1: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है।
0: बिल्कुल।
1: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही, तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस। काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल, मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
0: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया?
1: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार।

0: किया।
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
1: ओहो,
0: 97 में गाना बाहर आया, ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप
1: पेशेंस,
0: डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है
1: जी।
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ,
1: अच्छा,
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला, ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया। एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है, और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और बोलता है, अरे यार मैं तेरे को भी फोन लगा रहा हूँ, तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ, तब तक तू आ गया। वह जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ। अंदर गया, बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए, अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो।
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ना कुछ
1: बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी
1: जी।
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन सब से मैं मिला हूँ
1: जी। और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: और श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी।
1: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्ते सखियों, मैं हूं आपकी सखी कविता सैनी, जो लेकर आई है आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, जिसका कि आप सभी को रहता है इंतजार। तो लीजिए आपका इंतजार हुआ खत्म। हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आए हैं ज्ञान की ढेर सारी बातें, बहुत सी जानकारी और आपके मनोरंजन के लिए की संगीत। खत्म हुई भोर, सर उठाकर तो देखो, मिल जाएगी मंजिल, हिम्मत अपना कर तो देखो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। जी हाँ सखियों, अगर मजबूत इरादे और बुलंद हौसले हो तो हम बड़ी से बड़ी सफलता भी हासिल कर सकते हैं। कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो सफलता खुद कदम चूमने लगती है। सखियों, अगर कोई महिला अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की ठान ले तो कोई भी चुनौती उसको रोक नहीं सकती, वह आगे बढ़ सकती है। घर परिवार का कामकाज करते हुए भी कई महिलाएं आज आगे बढ़कर अपना नाम कमा रही हैं और अपने दम पर अपनी पहचान भी बना रही है। इतिहास गवाह है कि बात चाहे प्रतिनिधित्व की हो या फिर देश के निर्माण में योगदान की, महिलाएं कहीं भी किसी में पीछे नहीं रहती। आज ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपनी मंजिल तय की है और यह सब संभव हो पाया है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने समाज में एक नई पहचान तो बनाई ही है और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनाया है। स्वयं सहायता समूह बनाकर वे अपना रोजगार स्थापित करने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। महिला स्वयं सहायता समूह आज आत्मनिर्भरता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन रहे हैं। इनके माध्यम से तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और व्यापक बाजार मिल रहा है, साथ ही इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। सखियों, स्वयं सहायता समूह आपसी सहयोग और बचत पर आधारित एक छोटा स्वैच्छिक संगठन होता है जो सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाता है। ये ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में महिलाओं को नेतृत्व क्षमता, व्यवसाय प्रबंधन और आत्मनिर्भरता सिखाकर सफल उद्यमिता की नींव को मजबूत करता है। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है जिसमें गांव या मोहल्ले के लगभग 10 से 20 लोग आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं। सभी सदस्य हर महीने या हफ्ते अपनी क्षमता के अनुसार एक छोटी रकम जैसे 50 या 100 रुपए से एक साझा बैंक में खाते में जमा करते हैं। समूह में जमा हुए पैसों के फंड से किसी भी सदस्य को जरूरत पड़ने पर, जैसे कि घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई या कोई भी बीमारी के लिए बहुत कम ब्याज पर आसानी से

लोन मिल जाता है। वे सब मिलकर थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सके। जब समूह कुछ समय तक अच्छे से काम करने लगता है तो बैंक बिना किसी गारंटी के उन्हें बड़ा लोन देते हैं, जिससे सदस्य अपना नया व्यवसाय या रोजगार शुरू कर सके। इससे सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे आत्मनिर्भर बनते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से उठा पाते हैं। सक्योर स्वयं सहायता समूह लोगों का एक छोटा समूह जो सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आता है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बचत की आदत डालने और सामूहिक रूप से रोजगार शुरू करने की सबसे सशक्त पहचान है। ये छोटे स्तर से शुरू होकर लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से सफल उद्यमिता का आधार बनते हैं। ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने का एक प्रभावशाली माध्यम बन चुके हैं। इनके जरिए महिलाएं संगठित होकर अपने परिवार और समुदाय की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प, अगरबत्ती निर्माण, मसाले पैकिंग, जैविक खाद निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यह कौशल उन्हें रोजगार के लिए तैयार करता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिलकर उत्पादन करती हैं और सामूहिक ब्रांड के रूप में बाजार में अपनी वस्तुएं बेचती हैं। सामूहिकता के कारण लागत कम होती है और लाभ अधिक मिलता है। साथ ही स्वयं सहायता समूह को सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत तकनीकी सहयोग, अनुदान, प्रशिक्षण और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। सक्योर स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के लिए केवल एक आर्थिक संगठन नहीं बल्कि सशक्तिकरण का आंदोलन बन चुका है। इससे महिलाएं केवल कमाई नहीं कर रही बल्कि अपने परिवार और समाज में एक नई भूमिका निभा रही है, स्वावलंबी, सम्मानजनक और प्रेरणादायी। सक्योर स्वयं सहायता समूह में सभी सदस्य निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। नेतृत्व की जिम्मेदारी बारी बारी से सभी सदस्यों पर सौंपी जाती है, जो उनमें नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास करता है। सदस्य मिलकर कृषि, पशुपालन, सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण जैसे छोटे उद्योग शुरू करते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। समूह के रूप में काम करने वाली महिलाएं अक्सर छोटे स्तर से उत्पादन शुरू करके बड़े बिजनेस मॉडल तक का सफर तय करती है। महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों को न केवल स्थानीय बाजार बल्कि बाहरी राज्यों में भी बेचा जाता है। सक्योर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं ने साबित कर दिया है कि प्रेरणा और साहस के साथ व्यक्ति महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही है, बस जरूरत है महिलाओं को उन योजनाओं की जानकारी लेकर आगे बढ़ने की। सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, बस उस प्रयास में हमें छोटा सा अपना योगदान देना है, समय निकालना है, ट्रेनिंग लेनी है और बस फिर आगे अपना काम शुरू करना है। अपने क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी योजनाओं जैसे लखपति दीदी या दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ उठाने और अपने समूह के व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप विभिन्न सरकारी और वित्तीय सहायता पोर्टल्स का भी सहयोग ले सकते हैं। तो सखियो, ये तो हमने आपको जानकारी दी स्वयं सहायता समूह के विषय में। देंगे आगे और भी जानकारी, फिलहाल अपनी बातों के क्रम को देते हैं थोड़ा सा विराम, करवाते हैं आपका मनोरंजन इस गीत के साथ।

सखियों कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देते हैं आज के खास दिन के विषय पर। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने से न सिर्फ व्यक्तिगत विकास होता है बल्कि पूरी दुनिया अधिक मजबूत बनती है। इसे सरल शब्दों में हम समझें तो सहकारिता का अर्थ है

सबका साथ और सबका विकास। जब बहुत सारे लोग मिलकर बिना किसी एक मालिक के एक समान लक्ष्य के साथ काम करते हैं तो उसे सहकारी समिति कहते हैं। इस दिन दुनिया भर की सहकारी संस्थाएं अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाती है। इसका लक्ष्य आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, लोगों को गरीबी से उभारना और शांति स्थापित करना है। सखियों, आम व्यापार में कोई एक व्यक्ति मालिक होता है और वही मुनाफा कमाता है, लेकिन सहकारिता में सभी सदस्य बराबर के हिस्सेदार होते हैं और मुनाफे को आपस में बांट लिया जाता है। जब छोटे किसान, मजदूर या आम लोग अकेले कोई काम करते हैं तो उन्हें नुकसान का डर होता है, लेकिन जब एक समूह बना लेते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसमें कोई एक अकेला मालिक नहीं होता, जो लोग मिलकर काम करते हैं वे ही इसके मालिक होते हैं और सभी फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। जो भी फायदा या मुनाफा होता है वे किसी एक की जेब में जाने के बजाय सभी सदस्यों के बीच उनकी मेहनत और योगदान के हिसाब से बांट दिया जाता है। सखियों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को यह बताना है कि आपसी सहयोग से गरीबी कम होती है, रोजगार बढ़ता है और समाज में शांति व समानता आती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के इतिहास पर अगर हम गौर करें तो इसे पहली बार 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन द्वारा मनाया गया था। 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया। तभी से हर साल आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उनके विस्तार और लाभ को बढ़ावा दे सके। सखियों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 की थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। यह विषय सामाजिक न्याय, एकजुटता और समावेश को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की भूमिका को उजागर करता है। यह विषय न केवल संघर्षों को रोकने में बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और आपसी विश्वास पैदा करने में सहकारिता के योगदान को मान्यता देता है। यही नहीं, सहकारी समितियां समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक जीवन में भाग लेने में सक्षम बनाती है। सखियों, सहकारी समितियां ऐसे स्वैच्छिक आर्थिक संगठन होते हैं जहां सदस्य मिलकर कोई कामकाज करते हैं जिसके आर्थिक नुकसान का कुछ जोखिम भी हो सकता है और उसके जरिए आय अर्जित करते हैं। ये संस्थाएं न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी लोगों को सशक्त बनाती हैं। साथ ही यह दिवस इस ओर भी ध्यान आकर्षित करता है कि सहकारी समितियां उन परिस्थितियों में भी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में किस तरह सहायक होती हैं, जहां अकेले प्रयास करना पर्याप्त नहीं होता। जैसे कि उत्पादक सहकारी समिति कच्चे माल और उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराकर छोटे उत्पादकों की सहायता करती है। उपभोक्ता सहकारी समिति उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए गठित उत्पादकों से सीधे खरीद करके बिचौलिए को खत्म करना है। सहकारी विपणन समिति छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों की सामूहिक बिक्री करके उनके विपणन में सहायता करती है। सहकारी कृषि समिति छोटे किसान बड़े पैमाने पर खेती का लाभ उठाने के लिए इन समितियों का गठन करते हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सदस्यों के लिए जमीन खरीदकर उसे विकसित करके किफायती आवासीय विकल्प प्रदान करती है। सखियों, सहकारी समिति एक स्वैच्छिक संगठन है जहां साझा जरूरतों वाले व्यक्ति आम आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। ये समितियां स्व सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय समाज के वंचित वर्गों के हितों की सेवा करना है। सखियों, बहुत संक्षेप में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का सीधा सा अर्थ है मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करके काम करने की भावना का जश्न मनाना। यह दिन सहकारी समितियों की ताकत को दिखाता है, जहां लोग आपस में जुड़कर मुनाफा कमाने के बजाय सबके साथ सबके विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना के मकसद से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करना ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का उद्देश्य है। फिलहाल अपनी बातों के क्रम को देते हैं यहाँ एक बार फिर से विराम और ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में।

स्वागत है सखियों एक बार फिर से आपके अपने ही कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों अब कुछ ही दिनों में रिमझिम फुहारों के साथ बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। बरसात का मौसम आते ही वातावरण खुशनुमा और हरा भरा हो जाता है। आसमान में बादलों की लुका छुपी और भीनी भीनी खुशबू हमारे मन को मोह लेती है, जो हमें भीषण गर्मी से राहत दिलाकर चारों ओर ठंडक का एहसास कराती है। बरसात का मौसम हो, हर तरफ धुली धुली हरियाली हो और ठंडी ठंडी हवाएं हो, तो ऐसे में हर किसी का मन बाहर घूमने के लिए मचल उठेगा। और जब बात आती है बारिश की बूंदों के साथ खूबसूरत नज़ारों का मजा लेने की, तो हमें कुछ खास जगहों की याद आने लगती है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली और वाटरफॉल्स हमारे मन को मोह लेते हैं और मन घूमने को करने लगता है। इसलिए बरसात का ये मौसम पिकनिक के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अक्सर हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने का प्लान करते हैं, परंतु हमारी जरा सी लापरवाही से हमारी पूरी पिकनिक का मजा बिगड़ जाता है। इसलिए पिकनिक पर जाने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी होगी, ताकि हम पिकनिक का पूरा मजा ले सके। तो आज विविधा में हम आपको बताने जा रहे हैं बरसात के मौसम में पिकनिक जाए रही सावधान। सखियों बरसात के मौसम में पिकनिक पर जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि आप जिस भी वाहन से जाना चाहते हैं, जाने से पहले उसकी हवा, पेट्रोल और फ्रंट ग्लास से पानी हटाने वाले वाइपर की चेकिंग अवश्य करवाएं, ताकि रास्ते में पानी बरसने पर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अपने परिवार के सदस्यों की पसंद और उम्र के अनुसार जगह का चुनाव करें। अगर परिवार में बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं तो पहाड़ी और ऊंचाई वाले स्थान पर जाने से बचें। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप आसानी से पहुंच जाए। सखियों चूंकि बारिश में चारों तरफ कीचड़ और मिट्टी हो जाती है, इसलिए हो सके तो खुली चप्पल या सैंडल के स्थान पर वाटरप्रूफ जूतों का ही इस्तेमाल करें। जाहिर सी बात है, आप पिकनिक पर जा रहे हैं तो कहीं पार्क में बैठेंगे भी, लेकिन बारिश के मौसम में अक्सर पार्क की जमीन गीली होती है। अगर डायरेक्ट गीली घास पर बैठ जाएंगे तो सारे कपड़े खराब हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बैग में एक वाटरप्रूफ पिकनिक मैट या प्लास्टिक शीट जरूर रखें। इन दिनों में पानी कभी भी बरस सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जाने से पहले रेनकोट और छाता अपने पास जरूर रखें। सखियों अगर आप बरसात के मौसम में अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं, तो अपने बैग में प्लास्टिक के छोटे छोटे कैरी बैग्स जरूर रखें, ताकि जरूरत पड़ने में इसमें मोबाइल रखा जा सके। इसके साथ ही कोशिश करें कि आप अपने साथ वाटरप्रूफ बैग ही ले जाएं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक छोटे मोटे गैजेट्स को आप आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर बारिश के मौसम में पिकनिक के लिए बच्चे भी साथ जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ बैग में बच्चों का एक एक्स्ट्रा कपड़े कम से कम जरूर लेके जाने चाहिए। इससे अगर बच्चे भीग भी गए तो आपको उनके पास कपड़े बदलने का विकल्प रहेगा और बच्चे बीमार भी नहीं होंगे। पिकनिक पर जाते समय खाने पीने के लिए डिस्पोजल ग्लास या प्लेट्स का ही प्रयोग करें। साथ ही पिकनिक वाले स्थल पर जरा भी गंदगी आप ना फैलाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कचरे को रखने के लिए एक अतिरिक्त कचरा बैग को अपने साथ लेकर जाएं। सखियों कुछ लोगों को तेज धूप, गर्मी, उमस या घुमावदार जगहों पर चक्कर और उल्टी की समस्या होने लगती है, इसलिए दवाइयां अपने साथ रखें। रेडीमेड स्नैक्स के बड़े पैकेट के स्थान पर छोटे पैकेट अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि बारिश में एक बार खुल जाने पर पूरी खाद्य सामग्री नमी युक्त हो जाती है। नदियों, तालाबों और झरनों के तेज बहाव में ना जाए। बारिश में चट्टानें बहुत फिसलन भरी हो जाती हैं, इसलिए उनके पास जाने से बचें। सखियों बारिश के मौसम में पिकनिक पर जाना एक मजेदार एहसास होता है, वहीं अगर आप सही तैयारी के साथ नहीं जाते तो यह आपका मजा किरकिरा भी कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिकनिक यादगार और खूब मौज मस्ती वाली हो, तो वाहन चलाते समय धीमी गति रखें, फिसलन भरी सड़कों पर सतर्क रहें, पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें, पानी भरे रास्तों से बचकर निकलें। तो सखियों इसी के साथ अब हमारे कार्यक्रम का भी समय हो गया कि हम आपसे जाने की अनुमति लें। कल हम फिर आएंगे अपने एक नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी सखी कविता सैनी को कार्यक्रम महिला जगत से जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। संध्या के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकिता सिंह धानका स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आशा करती हूं कि आप सभी कुशल होंगे। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें जब भी आती हैं जमाने में वक्त नहीं लगता सच्चा साथी पहचानने में। भले ही पीठ दिखा दे ये पूरी दुनिया, सुकून मिलता है बस उस एक के पास आने में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इमोशनल और रिलेटेबल है। लाइफ में जब सब कुछ स्मूथ चलता है ना, तो हमारे आसपास लोगों की एक लंबी सी लिस्ट होती है, पार्टी, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, फॉलोअर्स और चिल करने वाले बडीज। लेकिन जैसे ही लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बैड पैच आता है, तो पूरा सिनेरियो बदल जाता है। तब हमारा दिल और दिमाग सबको शॉर्टकट में फिल्टर कर देता है और उस डार्क फेज में जो एक व्यक्ति सबसे पहले याद आता है, वही हमारी लाइफ का सबसे कीमती इंसान होता है। भीड़ बहुत है इस दुनिया के मेले में, पर याद वही आता है जो साथ दे अकेले में। कीमती होते हैं वो लोग जो हाथ थाम लेते हैं, वरना कोई नहीं पड़ता किसी के झमेले में। एब्सोल्युटली राइट। साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर हम देखें तो हम जब स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारा माइंड सबसे पहले उस पर्सन को ढूंढता है जहां हमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट और सिक्योरिटी मिलती है। वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड्स या फिर आपका पार्टनर। और वो इंसान हमारा रियल लाइफ एंकर होता है। जब पूरी दुनिया आपको जज कर रही होती है तो वो एक इंसान आपको बिना फिल्टर्स के एक्सेप्ट कर रहा होता है और उससे बात करके लगता है कि बॉस, सिचुएशन चाहे जितनी भी खराब हो, एवरीथिंग विल बी फाइन। आजकल की फास्ट पेस्ट लाइफ में हम सब सोशल मीडिया पर वर्चुअल कनेक्शंस बनाने में बिजी हैं, पर फ्रेंड्स, वर्चुअल लाइफ आपके स्ट्रेस को कम नहीं कर सकती। रियल इमोशनल सपोर्ट आपको वो ही इंसान दे सकता है जो आपकी साइलेंट क्राइस को भी समझ ले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्पेशल पर्सन है जिसका ख्याल आपको प्रॉब्लम आने पर सबसे पहले आता है, तो यू आर रियली लकी पर्सन।

तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और हर सैटरडे हम बात करते हैं आईएएस स्टोरी की। और आज की हमारी स्टोरी है आईएएस आदित्य पांडे की। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर देखा जाता है कि प्यार में धोखा मिलने के बाद इंसान खुद को सफल बनाने की ठान लेता है। और दोस्तों, ऐसी ही कहानी है आईएएस आदित्य पांडे की। इन्होंने प्यार में धोखा मिलने के बाद गर्लफ्रेंड से कहा कि एक दिन वे आईएएस अधिकारी बनेंगे। कई असफलताओं और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार यूपीएससी परीक्षा पास कर अपना सपना पूरा किया। बिहार के पटना निवासी

आदित्य पांडे अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। वे पढ़ाई से ज्यादा शरारतों के लिए पहचाने जाते थे। उनके एक शिक्षक ने मजाक में उनके पिता से कहा कि अगर ये लड़का पढ़ाई में सफल हो गया तो वो अपनी मूंछें मुंडवा लेंगे। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना में हुई, लेकिन बाद में वो अपनी बहन के पास गुजरात के जामनगर चले गए। जामनगर में पढ़ाई के दौरान आदित्य ने 8वीं और 9वीं कक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और क्लास में टॉप भी किया, लेकिन 10वीं में उनकी गर्लफ्रेंड बन गई, जिसके कारण उनका ध्यान पढ़ाई से भटक गया और हाई स्कूल का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें वापस पटना बुला लिया। पिता की इच्छा पर उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन फिर उनकी गर्लफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हो गया और प्यार में धोखा मिलने के बाद उन्होंने IAS बनने की ठान ली। UPSC की तैयारी के दौरान आदित्य 2 बार असफल हुए, लेकिन फिर उन्होंने एक बेहतरीन रणनीति से तैयारी की। फिर मेंस परीक्षा के लिए रोज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की और UPSC 2023 में ऑल इंडिया 48वीं रैंक हासिल की और आज वे IAS ऑफिसर हैं। तो दोस्तों, आप भी यदि चाहें तो जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, बेशर्त आपकी मेहनत में

तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे वन महोत्सव 2026 के बारे में। 1 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह भारत का वार्षिक सप्ताह भर चलने वाला वनों का उत्सव है, जिसमें मानसून की शुरुआत में देश भर के लोग, स्कूल, कंपनियां और सरकारी निकाय मिलकर वृक्षारोपण करते हैं। इस उत्सव की शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि व खाद्य मंत्री K.M. मुंशी ने वृक्षारोपण और संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। यह मार्गदर्शिका वन महोत्सव से संबंधित हर आम प्रश्न का उत्तर देती है, जैसे कि इसकी सटीक तिथियां, इसका इतिहास, यह जुलाई में क्यों मनाया जाता है, आज के समय में इसका महत्व और आप इसमें कैसे भाग ले सकते हैं, और अन्य अधिकांश प्रश्नों पर पाई जाने वाली पुरानी और विरोधाभासी जानकारी को भी सही करती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वन महोत्सव 2026 में हम कैसे भाग ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए एक पेड़ लगाएं या प्रायोजित करें तथा अपने निजी स्थान यानी कि बगीचे, छत या बालकनी में गमले में पौधे लगाएं। स्थानीय अभियान जैसे कि वन विभाग एवं नगर निगम जैसे सामाजिक सेवा इकाइयों की घोषणा पर नजर रखें। अपने स्कूल या संस्था में एक अभियान आयोजित करें, कॉर्पोरेट या CSR अभियान चलाएं एवं किसी भी व्यक्ति के नाम पर पेड़ लगाएं। दोस्तों इसके लिए आपको जमीन, पैसा या किसी संगठन की जरूरत नहीं, इनमें से एक या दो काम चुने और उन्हें पूरा करें। यह कार्य अधूरे कामों की लंबी सूची से कहीं बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए जागरूक कर सकते हैं और लोगों को पेड़ काटने के कारण होने वाले नुकसानों के बारे में बताकर भविष्य में उनसे होने वाली हानि के बारे में जागरूक कर

तो दोस्तों अब टाइम हो गया है हमारी आज की जानकारी के बारे में जानने का। जी हाँ फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से नई ग्रामीण रोजगार योजना VVG रामजी एक्ट लागू कर दिया है, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके तहत औसत मजदूरी 298.8 रुपए से बढ़ाकर 327.4 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है और सरकार ने 300 रुपए की न्यूनतम मजदूरी दर तय की है। अब 100 की जगह 125 दिन तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक देश के सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और वेतन क्षेत्रों में मजदूरी दरें बढ़ाई गई हैं। सरकार ने 300 रुपए प्रतिदिन की एक नई न्यूनतम मजदूरी दर तय की है, ताकि किसी भी इलाके में मजदूर इससे कम ना हो। सरकार का कहना है कि पूरे देश में औसतन 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 21 राज्यों और प्रदेशों को नई न्यूनतम मजदूरी दर 300 रुपए तक पहुंचाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में मजदूरी दरों में 15 से 25% तक बढ़ोतरी होगी। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे ज्यादा करीब 24.5% की बढ़ोतरी होगी। जिन राज्यों में पहले से मजदूरी ज्यादा थी, वहां भी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए, केरल में 401 रुपए और सिक्किम की ऊंचाई वाले इलाकों में 450 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। सरकार ने इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी मजदूर एक दिन भी बिना काम के ना रहे। पुराने जॉब कार्ड तब तक मान्य होंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसके लिए बजट में प्रावधान किया, जबकि 24 राज्यों ने अपनी योजना अधिसूचित कर दी।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है एफ एम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने को है, वह आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएमएडिक्स 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज और कल की सभा के शेष कार्यक्रमों की।

हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों में अब से कुछ ही क्षणों के बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा 6:30 का। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे 6:45 पर। संध्या के 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। कार्यक्रम में विषय रहेगा खरीफ मक्का उत्पादन की तकनीकी। भेंटवार्ता होगी परंपरागत फसलों के साथ बागवानी से अधिक आय प्राप्त करें, ग्राम खेडली सैयद पंचायत समिति उमरैन के प्रगतिशील किसान श्री ध्यानेंद्र यादव जी से भेंटवार्ता और जानकारी देंगे आपको मक्का में नैनी DAP खाद का उपयोग, उन्नत पैदावार की नई तकनीकें। 7:30 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि के 8:15 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि के 8:45 पर। अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि के 9 और विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:15 से लेकर रात्रि के 11 तक। रात्रि के 11 होंगे हिंदी में समाचार और इन्हीं समाचारों के साथ संपन्न होंगे आज की सभा के प्रसारण। कल की सुबह प्रारंभ होगी हमारे कार्यक्रम हिंदी में समाचारों के साथ सवेरे 6:00। वंदनवार कार्यक्रम होगा सवेरे 6:05 पर। कार्यक्रम झरोखा आप सुनेंगे 6:30 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। संगीत सरिता का आप आनंद ले सकेंगे 6:45 पर। सवेरे 7 होगा कार्यक्रम नमस्कार अलवर। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे 7:30 पर। समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे सवेरे 8:00। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सवेरे 8:15 पर। स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम होगा सवेरे 8:30 पर। इस कार्यक्रम में भेंटवार्ता होगी फ्रोजन शोल्डर और डिसलोकेशन की समस्या, डॉक्टर अरुण सिंह से श्री शिव कुमार शर्मा की बातचीत। सवेरे 9 होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:10 सर। सवेरे 10:30 का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम रिले होगा प्रकृति की बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत श्री देवेंद्र सुरा से बातचीत। और इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। संध्या के 5 कार्यक्रम होगा बच्चों का फुलवारी। विषय रहेगा नहीं चलेगा कोई बहाना अब स्कूल है जाना। बच्चों के मुख से आप सुनेंगे गुरुकुल अमारोहा की कक्षा 7 की छात्रा काव्य से योग तथा भारतीय संस्कृति विषय पर शिल्पा लखानी की बातचीत। और आओ जाने में आप सुनेंगे क्या होता है रिसाइकलिंग और होंगी कुछ बाल कहानियां। कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा संध्या के 5:30 पर। विषय रहेगा संतुष्ट रहने वाला सुखी और तुलना करने वाला सदा दुखी ही रहता है। टेक ज्ञान में आप सुनेंगे सुपर कूल सीमेंट तकनीक और ब्लूटूथ का नामकरण। हिंदी में समाचार होंगे संध्या के 6:00। फिल्म संगीत होगा 6:10 पर। संध्या के 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती और 7:30 पर आप सुन सकेंगे ICC महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। इसके बाद आप सुन सकेंगे 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि के 9 समाचार अंग्रेजी में और इन समाचारों के बाद आप फिर से सुन सकेंगे ICC महिला T20 विश्व कप 2026 अंतर्गत लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। और इसके बाद रात्रि 10:45 से आप सुन सकेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103।

दशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंगली का ये गीत, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार व 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से। कृपया प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की ये रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक और पेट्रोलियम सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगी। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम से सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। उन्होंने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4-लेन निर्माण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये परियोजना विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से राजस्थान में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी रिफाइनिंग क्षमता में लगातार विस्तार किया है और देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला राष्ट्र बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वैश्विक संकट के बावजूद घरेलू रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने में सफलता हासिल की। समारोह के दौरान श्री मोदी ने सरकारी सेवा में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी के मैन कंट्रोल यूनिट का अवलोकन कर कच्चे तेल की शोधन प्रक्रिया, तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रिफाइनरी परिसर में खेजड़ी का पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पूरी दुनिया को 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने समय पर लिए गए निर्णयों, प्रभावी रणनीति, संसाधनों के संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति के बल पर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ईंधन संकट से जूझ रहे थे, तब भारत ने स्थिति का सही आकलन करते हुए दूरदर्शी नीति अपनाई और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइन

0: देश के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे राजस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज समूचा देश और राजस्थान विकास की गति पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
2: आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
1: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। प्रदेश भर में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालयों पर हुए कार्यक्रमों में जिला प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान 54,000 से अधिक युवाओं को रोजगार किट वितरित किए गए। इनमें प्रधानमंत्री के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित रोजगार उत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सवाईमाधोपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और चूरू में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि विभाग ने प्रदेश को जैविक खेती का मॉडल बनाने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच के प्रयास तेज किए हैं। कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने आज कोटा में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि किसानों को जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए जिलों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
3: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को, किसानों के पास जाएं, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा की है, इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हमारे संस्थान है, वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट लाके निःशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराए।
1: सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आज से विधि और न्याय मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। 2 दिन के सम्मेलन में देश में न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुधारों और कानूनों पर देश भर से आए विधिवेत्ता विचार विमर्श कर रहे हैं। इस दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुसार देश के न्यायिक क्षेत्र में कार्य योजना

0: पर भी मंथन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 12 से 18 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 अब 9651 पदों के लिए होगी। गौरतलब है कि आयोग ने शुद्धि पत्र के जरिए पूर्व में पदों की संख्या बढ़ाकर 10537 कर दी थी, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले पर आयोग के सचिव ने आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान बताया कि मूल पदों में अधिकतम 50% तक की ही बढ़ोतरी की जा सकती है। सुनवाई के बाद आयोग ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए 9651 पद अधिसूचित किए हैं। राज्य में मॉनसून की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। करीब सप्ताह भर की देरी से आए मॉनसूनी बादलों ने बीते 24 घंटों में दक्षिणी पूर्वी जिलों के साथ ही पश्चिमी जिलों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की उत्तरी सीमा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू होकर गुजर रही है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 5-7 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की भी चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मॉनसून, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अनेक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के साथ साथ विकास कार्यों की भी लगातार समीक्षा कर रहा है। आज की जिले की चिट्ठी में इन सभी पर बात करेंगे। जिले में पिछले दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला। कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश थमने के बाद उमस बढ़ गई है। दूसरी ओर धान की रोपाई का काम शुरू होने से किसान खेतों में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इसके साथ ही घग्गर नदी में पानी की संभावना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई और नदी के तटबंधों के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव लगातार शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी काम करने के निर्देश दे रहे हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में अनियमितताओं की जाँच भी जारी है। कृषि विपणन विभाग ने जांच के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी विक्रय के मामले सामने आने की पुष्टि की है। विभाग के अनुसार दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और आढ़तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 3 दिन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 2 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई, जो निर्धारित लक्ष्य का 78.70% रहा। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर छूटे बच्चों को दवा पिलाई। अभियान में 11,780 पोलियो वैक्सीन वॉयल का उपयोग किया गया। शेष बच्चों तक पहुँचने के लिए फॉलो अप अभियान जारी है। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बीते दिनों एक दिवसीय रोजगार

0: शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। शिविर में निजी कंपनियों, प्रशिक्षण संस्थानों और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। रोजगार विभाग ने साल भर ऐसे शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को गैर संचारी रोग कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सीएमएचओ ने बताया कि समयबद्ध स्क्रीनिंग, नियमित उपचार, फॉलोअप, डेटा गुणवत्ता में सुधार और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ये उपलब्धि मिली है। जिले में उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की व्यापक स्क्रीनिंग की गई। हाल ही में राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 60 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान तथा 24 प्रेरकों को प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने दानदाताओं की सराहना करते हुए उनके योगदान के वीडियो जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शित करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस और प्रशासन ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया। जिला प्रशासन के मिशन बुनियाद के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 400 से अधिक ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीमों ने स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, कुपोषण की पहचान, एनीमिया जांच और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। श्रमिकों को स्वच्छता, मौसमी बीमारियों तथा नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ, जिसमें 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक

खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माए मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावर सत्र 20 जुलाई उ राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य में चौमासारी बिरखा तेज भी आवता कुछ दिन माए उगनी और लंकाऊ हल्का माए भारी बारिश री चेतावनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रो पहलो ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स देश ने सौंपियो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार का न्यू मिलर 79,450 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ई रिफाइनरी माए सालाना 90,00,000 मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो जावेला। ई मौके प्रधानमंत्री 1,05,000 करोड़ रुपया रा खर्च वाला पेट्रोकेमिकल्स शहरी परिवहन रेलवे सड़क नवीकरणीय ऊर्जा बिजली और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा चरण रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम जनता ने सौंपिया। वह चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेलवे लेन ने दोवड़ी बनावन री परियोजना और नेशनल हाईवे नंबर 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 ने 4 लेन री बनावन रा काम री शुरुआत कीनी। श्री मोदी 1,000 मेगावाट बूता वाली बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना ये जनता ने सौंपी। प्रधानमंत्री राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा हल्काऊं बिजली निकासी सारू 1,900 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ट्रांसमिशन लाइन रोई उद्घाटन कीनो। ई मौके वे कहो के रिफाइनरी री आप

0: परियोजना विकसित और खुदरेपाण उबो भारत बनावन री दिशा माए खास कदम है। श्री मोदी कहो कि तेल साफ करन रा इन कारखानाओं प्रदेश माए मोकला लोगां सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला और औद्योगिक विकास और तेज वेला।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी कहो कि पश्चिम एशिया संकट रे बावजूद भारत टेम सर करी जिया फैसला असरदार रणनीति साधना रा संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति रे पाण इन चुनौती रो कामयाबी सागे सामो कीनो। वह कहो कि दुनिया रा

0: यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: શ્રી મોદી કહ્યું કે પશ્ચિમ એશિયા સંકટ રે બાવજૂદ ભારત ટેમસર કરી જ્યાં ફેસલા અસરદાર રણનીતિ સાધનારા સંતુલિત ઉપયોગ અર મજબૂત કૂટનીતિ રે પાણ ઈ ચુનૌતી રો કામયાબી સાગે સામો કિનો વ કહ્યું કે દુનિયારા કે દેશ ઈંધન રી પરેશાની જૂઝ રહ્યા હા વાં વગતી ભારત આગે રી સોચ ઉ નીતિ અપનાર દેશ રી ઉર્જા હિફાજત તે કિની।
0: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: प्रधानमंत्री कहो कि भारत तेल साफ करण रा बूता ने लगातार बधावण सागे आज दुनिया रो रिफाइनिंग बूता वालो चौथो मोटो देश बन गयो है। श्री मोदी कहो कि सरकार दुनिया माए तेल गैस रा संकट पीछे रसोई गैस रा मोल माथे काबू राखण माए कामयाबी हासिल कीनी। जलसारा दौरान वे नवी सरकारी नौकरी लागण वाला नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया। ए मौके प्रधानमंत्री रसोई गैस भरिया टैंकर ही रवाना कीना। श्री मोदी रिफाइनरी री मेन कंट्रोल यूनिट रो दौरो कैरर कच्चा तेल न साफ करण री प्रक्रिया तकनीक और उत्पादन री जानकारी लीनी। वह एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत रिफाइनरी परिसर माए खेजड़ी रो पौधो ही रोप्यो। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री रो आभार जताता थका तेल साफ करण रा कारखाना रा उद्घाटन ने राजस्थान सारू माथो ऊंचो करण वालो बतायो। श्री शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए पूरो देश और राजस्थान लगातार विकास कर रियो है।
0: आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
1: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री, जनतारा नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। इनो पहली प्रधानमंत्री जोधपुर में हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन कीनो। ई मौके वे संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत कीनी। 28,840 करोड़ रुपए री ई योजना रो मकसद आवता 10 साल में जनता ने हवाई सेवा मुहैया करावनो है। कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहा। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव राखी जियो। जिला मुख्यालय माथे राखी जिया कार्यक्रम में माए जिला ना प्रभारी मंत्री और जनता रा नुमाइंदा सरकारी महकमा माए नुई नौकरी लागण वाला ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपिया। इस दौरान 54,000 नौजवाना ने रोजगार किट दिया जिया। आ कार्यक्रम माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा पचपदरा माए राखी जिया कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण बताई जियो। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर माए नियुक्ति पत्र दीना। जोधपुर माए राखी जिया रोजगार उत्सव माए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सागर राज्य रा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समेत जनता रा कई नुमाइंदा शामिल भया। डीग माए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सवाई माधोपुर माए प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सवाई माधोपुर माए किरोड़ी लाल मीणा और चूरू माए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत नवी नौकरी लागण वाला ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया।

0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई न शुरू फैला 13 अगस्त ताई चालन वाला पावस सत्र सारू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे दीनी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आ जानकारी दीनी वे बतायो का सत्र माए देश रा भला सारू खास मुद्दा माथ सार्थक बहस चर्चा और फैसला करण माथ ध्यान दियो जावेला। कृषि विभाग प्रदेश ने जैविक खेती रा हलका माय आदर्श बनावन सारू जिला स्तर माथे सोशल मीडिया अकाउंट मनार बत्ताऊं बत्ता काश्तकारां ताई पहुंच बधावन रे कोशिश तेज करती नी है। कृषि आयुक्त नरेश गोयल आज कोटा माय राखी जाए कार्यक्रम माय बतायो के किसाना ने जैविक उत्पादा ने बेचण लायक बनावन जनता ताई वारी जानकारी पुगावन और सर्टिफिकेशन री जानकारी दी जावेला। वे बतायो कि जैविक उत्पादन की बिक्री सारू जिला माय ठौड मुहैया कराई जावेला।
1: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को किसानों के पास जाएं, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा की है, इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जो भी हमारे संस्थान है ऑफिसेज है वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट लाके निःशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराएं।
0: सिरोही जिला रा आबू राज माए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माए आज विधि और न्याय मंत्रालय री खास उपलब्धियां वारा माए राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कीनो। दो दिन रा ई सम्मेलन माए देश माए न्याय व्यवस्था प्रशासनिक सुधार और कानून बारा माए देश भर आया कानून रा जानकार विचार कर रहा है। अरब मौसम राज्य में भय रही चौमासारी बिरखा बीच लाड़ला 24 घंटा माए प्रदेश लंकाऊ उगनी जिला सागे आतुणी हल्का माए कई ठोड़ा चोखो में बरसियो। मौसम महकमा रे मुजब मानसून रे उत्तरी सीमा उदयपुर अजमेर झुंझुनू वहती निकल रही है। विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन माए राज्य रा कुछ और हल्का माए चौमासारी बिरखा भेवन रा आसार है। जयपुर भरतपुर कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए आवता 5-7 दिन चौमासारी बिरखा चालती रेवन री संभावना है। इन दौरान उगनी और लंकाऊ उगनी हल्का माए कठे कठे भारी और कठे कठे घनी भारी बारिश सारू चेताईचियो है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ले रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माय देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपया बत्ता खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माय मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई उ राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी और राज्य में चौमासारी बिरखा तेज भी आवता कुछ दिन में उगनी और लंकाऊ हल्का में भारी बारिश री चेतावनी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी।

0: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को खूबी बहन की
1: और प्रियंका बहन की
0: घनी घनी राम राम, राम, राम। तो प्रियंका बहन, आज हमारे किसान भाइयों से हम किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे खरीफ मक्का उत्पादन की तकनीक के बारे में। और आज अपना मुख्य जो विषय रहेगा वो मक्का ही मानकर चलो कि मक्का के बारे में बात करेंगे। बीच में हमारे किसान भाइयों का थोड़ा सा मनोरंजन भी करवाएंगे, भेंट वार्ता भी सुनवाएंगे और उसके बाद फिर वापस बात करेंगे हम मक्का के बारे में ही। तो खरीफ मक्का उत्पादन हमारे किसान भाई जो करने जा रहे हैं तो उसकी नई नई जो तकनीक चल रही हैं उनके बारे में हमारे किसान भाइयों से बात करते हैं। तो ये बात है कि मक्का की जो बुवाई है वो असिंचित क्षेत्रों में होती है ज़्यादातर, और वर्षा की अपर्याप्तता जहाँ पर होती है या बराबर मात्रा में बारिश नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं भी होती, या उन्नत प्रबंधन की जानकारी नहीं होती, तो इन चीज़ों का मक्का की जो उत्पादन है उस पर बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो इन चीज़ों का हमारे किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा जो गुणवत्ता वाली जो मक्का होती है वो मीठी मक्का, फूली हुई फूल की जो मक्का होती है वो, और जो बेबी कॉर्न जो जिसे बोलते हैं वो, इनका शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उपयोग होता है। तो इन चीज़ों में अलग अलग जो इसकी किस्में हैं उनमें विविधता का ध्यान रखते हुए उनका उपयोग करें। तो हमारी जो मक्का की जो किस्में हमारे मुख्य रूप से राजस्थान में और राजस्थान में भी जो अलवर में लगाई जाती हैं उनके बारे में हमारे किसान भाइयों से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मक्का का जो 80% क्षेत्र है वो बारिश में ही से ही पोषित होता है। इन क्षेत्रों में सामान्य रूप से अब जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही प्रारंभ हो जाता है इसका समय, और लगभग 1.5 महीने बाद सितंबर तक ये समाप्त हो जाता है।
1: और इन 70 से 80 दिनों में वर्षा अपर्याप्त और अनियमित रूप से होती रहती है, कई बार काफी लंबा समय भी सूखा रह जाता है। ऐसे में वर्षा पोषित क्षेत्रों में शीघ्र से मध्यम समय में पकने वाली किस्मों को ही हमें बोना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: संकर और संकुल किस्मों की बात करें तो संकर मक्का के उत्पाद को बीज के रूप में प्रयोग करने से उत्पादकता काफी घट जाती है, अतः संकर मक्का का बीज हर वर्ष नया लाना जरूरी होता है। संकुल किस्मों में इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, इसीलिए किसान भाइयों इन किस्मों के उत्पाद को बीज के रूप में अगले वर्ष भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: बात करते हैं भूमि की चयन और जांच की। तो मक्का की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें खेत में पानी भरा रह जाता है, उसके कारण उसकी बढ़वार नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि उचित जल निकास वाला ही खेत लें जिसमें मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के मध्य हो। मक्का की खेती के लिए उपयुक्त तो यही सही रहता है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में हो। गर्मियों में अच्छे से जुताई यदि हमारे किसान भाइयों ने कर दिया है तो फिर वर्षा आने पर हैरो और कल्टीवेटर पाटा चलाकर खेत को समतल करके मक्का की बुआई करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से हमें बीजोपचार भी करना जरूरी होता है। जब भी बीज हमारे किसान भोएं तो हमेशा बीज उपचार कर ही बोना चाहिए। संकर बीज उचित कवकनाशों से उपचारित होता है, और संकुल किस्मों के अनुपचारित बीजों को रोग एवं कीट प्रबंधन से सुझाई कवकनाशी एवं कीटनाशी से उपचारित करें। इसके अलावा बीजों को जीवाणु खाद से एजोटोबैक्टर एवं PSB से उपचारित करें। फास्फोरस पौधों को पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाता, इसके लिए किसान भाइयों फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया PSB का उपयोग किया जाता है। 250 से 300 ग्राम गुड़ 1.5 लीटर पानी में घोलकर ठंडा करें, और 600 ग्राम दानों को जीवाणु कल्चर अलग से घोल में मिलाकर देवें। घोल को बीजों पर डालकर हाथ से मसलें और छाया में सुखाकर 12 घंटे के अंदर बुवाई करें।
0: अब बात करते हैं बीज दर के बारे में। तो किसान मक्का की नियत बीज दर का प्रयोग करें, जरूरत से ज़्यादा पौधों को नहीं लगाएं। अतिरिक्त पौधों को जो 15 दिनों के बाद जब वो थोड़े कच्चे कच्चे से होते हैं जब निकल जाते हैं तब उनको निकाल के अलग हटा दें। विभिन्न प्रकार की मक्का में अच्छे उत्पादन के लिए जो बीज दर है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे किसान भाई यदि जल्दी पकने वाली संकर या संकुल गुणवत्ता वाली मक्का को उपयोग में ले रहे हैं तो इसमें बीज दर जो है वो 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। देर से पकने वाली संकर या सामान्य किस्मों को हमारे किसान भाई काम में ले रहे हैं तो इसमें भी बीज दर जो है वो 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर रख सकते हैं।
1: इसी तरह से फूली की मक्का की फसल यदि हमारे किसान भाई लेते हैं तो जो पौधों में कतार से कतार की जो दूरी रखनी है

0: वो 60 से 20 सेंटीमीटर हमें रखनी है और बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेनी है। मीठी मक्का अगर हमारे किसान भाई ले रहे हैं तो उसके लिए 5 से 6 बीज दर प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लें और शिशु मक्का के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो फसल ले सकते हैं।
1: अब बात करते हैं कि हमारे किसान भाई जो भी पोषक तत्वों को काम में लेना चाह रहे हैं तो वो उसकी मात्रा किस तरह से काम में ले। जो शीघ्र पकने वाली किस्में हैं उसमें 90% नाइट्रोजन, 30% फास्फोरस और 25% जिंक जो सल्फेट है उसका उसका मिश्रण करके और फिर मिलाना है। यानी कि यदि 90 किलो नाइट्रोजन है, 30 किलो फास्फोरस है तो 25 किलो उसमें जिंक सल्फेट को मिलाकर और प्रति हेक्टेयर की दर से इसका भुरकाव करना है। मध्यम समय या देर से पकने वाली जो किस्में हैं या फिर शिशु मक्का है यानी कि बेबी कॉर्न है, उसके लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 25 किलो जिंक सल्फेट का उपयोग प्रति हेक्टेयर करना है। इसी तरह से गुणवत्ता मक्का जो है उसमें
0: हमें 175 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 25 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लेनी है। मीठी मक्का की यदि बात की जाए तो 90 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले। फूली की मक्का की यदि हम बात करें किसान भाइयों तो 130 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें काम में लेना है।
1: बात करते हैं बुवाई के समय की, तो यदि मानसून अगर समय पर नहीं आ रहा तो और हमारा खेत तैयार कर रखा है तो मानसून की संभावना देखते हुए 2 से 4 दिन पहले मक्का की बुवाई सूखे खेत में हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी खरपतवार नियंत्रण की, तो सभी प्रकार की मक्का की प्रथम 40 से 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रखना बहुत ज़रूरी होता है। खरपतवार के प्रभावी नियंत्रण के लिए 0.5 किलोग्राम एट्राजिन, 1.5 किलो एलाक्लोर को 600 लीटर पानी में घोलकर अंकुरण से पहले ही छिड़काव कर देना चाहिए। 25 से 30 दिनों की अवस्था पर एक निराई और गुड़ाई कर देनी चाहिए, इससे निंदा राशि से बचे खरपतवार जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं
0: और भूमि में वायु का संचार भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यह हमने हमारे किसान भाइयों से चर्चा करी मक्का की उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए मक्का का उत्पादन हमारे किसान भाई किस तरह से ले सकते हैं इस बारे में। अब हमारे किसान भाइयों को एक बहुत ही अच्छी भेंट वार्ता सुनवाते हैं जिसमें हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे श्री ध्यानेन्द्र यादव जी और विषय रहेगा परंपरागत फसलों के साथ बागवानी से अधिक आय कैसे प्राप्त करें। गाँव खेडली सैयद, पंचायत समिति उमरैन और प्रगतिशील किसान भाई हमारे हैं श्री ध्यानेन्द्र यादव जी। तो किसान भाइयों सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों राम राम। आज हम बात कर रहे हैं खेडली सैयद के एक प्रगतिशील किसान भाई से जिनका नाम है ध्यानेन्द्र यादव जी। आप बागवानी भी करते हैं, तिलहन भी उगाते हैं, अनाज वाली फसलें भी लेते हैं, बहुत अच्छे आप प्रगतिशील किसान हैं। आइएगा इनकी कहानी इनकी जुबानी करते हैं कि कितनी रुचि लेकर के आप बागवानी करते हैं, किस तरह से जल का प्रबंधन करते हैं, किस तरह से खाद का प्रबंध करते हैं। आइएगा हम बात कर रहे हैं ध्यानेन्द्र यादव जी से। ध्यानेन्द्र जी राम राम साहब।
3: राम राम साहब। राम राम साहब।
2: कितने बीघा जमीन है ध्यानेन्द्र जी आपके पास?
3: अपने पास 11 बीघा जमीन है सर।
2: और 11 बीघे में आप क्या क्या लगाते रहते हैं, क्या क्या लगा रखा है, थोड़ा सा हमारे सभी श्रोताओं को बताएं।
3: हम 11 बीघा में 7 बीघा में बागवानी की हुई है
2: जी,
3: बाकी 4 बीघा में तिलहन वगैरह जो फसल है वो बोते हैं,
2: वो लेते रहते हैं। तो अभी आपने बागवानी की हुई है तो बागवानी में आपने कौन कौन सी बागवानी की फसलें लगा रखी हैं?
3: अब इसमें साहब हमने अनार लगा रखे हैं
2: जी,
3: एप्पल लगा रखा है,
2: यानी कि सेब जिसे कहते हैं।
3: हाँ, हॉट क्लाइमेट का जो सेब आता है जो जम्मू कश्मीर में उत्पन्न होता है वो अपने राजस्थान में यहाँ लगाया हुआ है
2: जी।
3: इसके अलावा हमने थाई एप्पल बेर लगा रखे हैं, उसके अलावा चीकू लगा रखे हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, मौसमी लगाई हुई है
2: जी,
3: कुछ पेड़ पपीते के लगाए हुए हैं और इसके साथ ही काफी और भी कई तरह की वेराइटी लगा रखी है।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने तरीके के फलदार वृक्ष लगा रखे हैं और उनकी कई तरह की किस्में आपने लगाई हैं। अभी आपने सेब की बात की, हॉट क्लाइमेट का जो सेब है कौन सी किस्म आपने लगाई है इसकी?
3: ये हरमन 99 है सर।
2: अच्छा, हरमन 99 जो सेब की किस्म आपने लगाई है, और कितनी कितनी दूरी पे, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी है और लाइन से लाइन की दूरी

0: कितनी रखी है?
1: लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 11 फीट है।
0: अच्छा, और कितने साल का आपके ये पौधे हो गए?
1: ये 2 साल के हो गए सर
0: जी। तो ये पौधों की व्यवस्था आपने कहाँ से की थी, कहाँ से लेकर के आए थे ये सेब के पौधे?
1: ये सेब के पौधे साहब सीकर से लेके आए थे।
0: जी जी, करीबन एक पौधा कितने का आपका पड़ा होगा?
1: वहाँ से 2 साल पहले ये 300 रुपए का एक पौधा पड़ा था।
0: बहुत अच्छी बात है। आप कितने कुल कितने पौधे आपने लगा रखे हैं?
1: 150 पौधे पल के हैं।
0: सारे पौधे जिंदे हैं?
1: सब पौधे जिंदे हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सेब लगा रखा है हॉट क्लाइमेट का। और हम जहाँ तक मानते हैं कि आपके गांव में और आसपास के गांवों में कहीं भी इतने पौधे सेब के हमें नज़र नहीं आते हैं, तो ये सेब लगाने का मन कैसे बना आपका?
1: ये सब प्रेरणा हमने कृषि विभाग के कुछ आप जैसे अधिकारी हैं उनसे भी ली है और जो हमने यूट्यूब के माध्यम से भी जानकारी ली, थोड़ा हमारा इंटरेस्ट खुद का भी था।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप बागवानी में निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपने बताया कि आपने चीकू भी लगा रखा है, तो चीकू के बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन सी किस्म आपने चीकू की लगाई है, कितने पौधे लगाए हैं?
1: चीकू के सब 125 पौधे हैं और वो काला पत्ती वेराइटी है
0: जी,
1: और सारे पेड़ ये 2 साल पहले एक साथ ही लगाए हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपका सारे पौधों की जो उम्र है वो 2 साल की है।
1: 2 साल की।
0: और आपने इसके अलावा आप बता रहे थे कि आपने अनार भी लगाया है, तो अनार कौन सी किस्म है आपकी?
1: अनार की भगवा सिंदूरी किस्म है सर, भगवा सिंदूरी लगाई।
0: अनार के कितने पौधे हैं आपके?
1: 125 पौधे हैं सर।
0: यानी कि करीबन सभी पौधे 125-150 के आसपास आपने लिए हैं। और अनार में इस समय क्या अवस्था अनार की आपकी चल रही है?
1: अनार में इस टाइम फ्लावरिंग चली हुई है।
0: जी जी,
1: फूल आया हुआ है और धीरे धीरे बाने में है लगातार
0: जी। आपने मौसमी भी लगाई है, तो मौसमी करीबन कितने बीघा में आपने लगाई है?
1: मौसमी करीबन 2 बीघा में है।
0: और कितने पौधे हैं इस समय?
1: उसमें 210 पौधे हैं सर।
0: अच्छा, कौन सी किस्म का आपको आइडिया है, कौन सी किस्म?
1: देसी भाषा में बोलते हैं चवन्नी छाप मौसमी।
0: तो बहुत अच्छी बात है कि आपने चवन्नी छाप मौसमी लगाई है। और इसके अलावा कुछ खुले पौधे और भी लगाए हैं आपने?
1: इसके अलावा अमरूद के पेड़ भी हैं
0: जी।
1: हाँ जी, और पपीते के हैं
0: जी जी जी जी।
1: कुछ सैंपल के रूप में हमने कटहल के, आलू बुखारा है
0: जी,
1: लीची है, चेरी है, अंजीर है, ये भी लगाई है।
0: अरे वाह वाह, कितने तरह के फल वृक्ष आपने लगाए हैं, सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि इतनी रुचि आप फलदार पौधों में लेते हैं, बागवानी में लेते हैं। निश्चित रूप से जब आपने फलदार बगीचा लगाया है तो आपने सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी उन्नत तकनीक अपनाई होगी, तो किस तकनीक से आप इन वृक्षों को पाल रहे हैं, फल वृक्षों को बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे सभी जो आकाशवाणी के श्रोताओं को बताएं।
1: सब पौधों के लिए हमने में ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है और ड्रिप के लिए ट्यूबवेल भी है और डैम भी बनाया हुआ है,
0: यानी कि जिसे फार्म पॉन्ड कहते हैं।
1: फार्म पॉन्ड कहते हैं
0: वो आपने बनाया है। हाँ, तो ड्रिप के अलावा बाकी के खेतों में सिंचाई करने के लिए और कौन कौन सी चीजें आपके पास हैं?
1: वो मिनी स्प्रिंकलर भी है और फुहारा सेट भी है, दोनों तरह के उसी से सिंचाई करते हैं।
0: यानी कि स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम अपना करके आप सिंचाई कर रहे हैं, तो क्या अंडरग्राउंड पानी की लाइनें भी आपने दबा रखी हैं?
1: सारी लाइनें अंडरग्राउंड है पानी की।
0: यानी कि खुला पानी आप बिल्कुल भी, यानी पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं?
1: नहीं, खुला पानी नहीं चलाते, सारा सब अंडरग्राउंड है पूरा।
0: बहुत अच्छी बात है। अभी आपने बताया कि फार्म पॉन्ड भी आपके पास है, तो आपको पता है कि सरकार फार्म पॉन्ड पे अनुदान भी देती है, सहायता भी देती है, क्या आपने भी सरकारी सहायता ली है?
1: जी साहब, सरकारी सहायता अनुदान लिया है सरकार से।
0: आपके जो बगीचा है, तो बगीचे के लिए हमने देखा है कि सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो सुरक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था यहाँ पे की हुई है?
1: सब चारों तरफ बगीचे के फेंसिंग की हुई है,
0: तारबंदी
1: की हुई है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या तारबंदी पे भी आपने सरकार से सहायता ली है?
1: तारबंदी पे सरकारी सहायता नहीं ली, क्योंकि वो साझे खाता था इसलिए उस पे अनुदान नहीं दिया।
0: यानी कि आपको ये तो पता है कि सरकार तारबंदी पे भी अनुदान देती है
1: जी साहब,
0: लेकिन आपके कुछ पारिवारिक जो साझेदारी की वजह से आप उस पे अनुदान नहीं ले पाए
1: जी साहब।
0: ये तो बहुत अच्छी बात आप जानकारी दे रहे हैं। सरकार आज खेत बचाओ अभियान चला रही है, किसानों को जागरूक कर रही है कि वो जैविक खेती अपनाएं, तो जैविक खेती के लिए किस तरह से जो हमारा जैविक कार्बन खेतों में कम हो रहा है उसके लिए आप खाद में क्या काम करते हैं?
1: देसी खाद का उपयोग करते हैं
0: जी,
1: और कुछ अपने देसी जैसे कि नीम खली है
0: जी,
1: और कैचुआ खाद है, और अपने वैसे स्प्रे में जैसे कि अपने जिसको बोलते हैं कली
0: जी,
1: देसी भाषा में कली बोलते हैं, उसका भी उपयोग करते हैं, तो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अभी इन पौधों में कोई रोग की

0: इस समय आपको नजर आ रहे हैं या स्वस्थ, आपका बागवानी स्वस्थ चल रही है, किस तरह का आप देख रहे हैं?
1: एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, हरापन है पूरे पेड़ों में, बहुत अच्छी ग्रोथ है, काफी अच्छी। 2 साल के पेड़ लगेंगे नहीं कि ये 2 साल के हैं।
0: और उसकी ग्रोथ देख करके नहीं लगता है कि 2 ही साल के पौधे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके यहाँ पे क्या बरसात वगैरह हो गई क्या? इस समय की खरीफ की फसलों की कुछ बुवाई की है या नहीं की है, या इंतजार कर रहे हैं बरसात का?
1: बरसात का इंतजार कर रहे हैं, अभी खरीफ की फसल बोई हुई नहीं है।
0: जी जी जी।
1: बाकी पेड़ पौधों में पानी ड्रिप से चला ही रखा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस खरीफ में आप कौन कौन सी फसलें आप लेंगे?
1: खरीफ में एक तो तिलहन में तिल्ली बोएंगे
0: जी,
1: कुछ मूंग बोएंगे, प्याज बोएंगे और बाजरा बोएंगे।
0: अरे वाह। तो क्या बीज की व्यवस्था कर ली या बरसात होने के बाद ही आप लेकर के आएंगे?
1: नहीं, बारिश के बाद ही लेके आएंगे।
0: आपको पता है कि जब भी बाजार से कोई भी कृषि का आदान, चाहे वो बीज हो, चाहे दवाई हो, कीटनाशी हो, चाहे कोई भी रासायनिक उर्वरक हो, उनको लेने के बाद विक्रेता से बिल लेना चाहिए, आपको जानकारी है?
1: हाँ, बिल लेते हैं ना सब।
0: उसका फायदा आपको लगता है बिल लेने का?
1: हाँ, बिल लेने का फायदा लगता है। एक तो उससे ओरिजिनल चीज मिलती है।
0: जी जी जी।
1: दूसरा, हमारे दिमाग में उसकी सेटिस्फेक्शन रहती है।
0: बिल्कुल, बिल लेने से।
1: हाँ, कि हमें कोई धोखा नहीं दे रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कई बार उद्यान विभाग, कृषि विभाग किसानों को प्रशिक्षण दिलवाते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, क्या आप उनमें भी भाग लेते हैं?
1: हाँ, लेते हैं ना, जो कैंप लगते हैं उनमें गए भी हैं, बहुत जगह ग्राम सेवक जी के साथ हम लोग टूर पे भी गए हैं।
0: जी जी जी जी जी।
1: कैंपों में भी गए हैं।
0: और आप जानकारी लेते रहते हैं?
1: जानकारी लेते रहते हैं।
0: तो हमारे जो श्रोता आकाशवाणी सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे खेती करें या बागवानी करें, किस में ज्यादा फायदा है, कैसे किसानों की आय दुगनी हो, क्या देखते हैं आप कृषि का भविष्य?
1: कृषि के अंदर यह है कि हम हमारी परंपरागत जो फसल है उनको थोड़ा छोड़ के, उनके साथ छोड़ के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर दें, उनके साथ हम बागवानी भी अपनाएं। और उसका थोड़ा ये है कि भाई दूरी थोड़ा ज़्यादा रख के उसमें बीच में आप इंटरक्रॉपिंग भी करें और बागवानी भी लगाएं, दोनों चीज़ एक साथ लेके चले, जिससे कि किसान के आय में इजाफा हो जाए।
0: बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए ध्यानेन्द्र यादव जी खेरली सैयद से आप बात कर रहे हैं, आपका पुनः आभार। और हमारे आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साहब, राम राम साहब,
1: राम राम।
2: तो किसान भाइयों, यह तो हमने सुनी एक बहुत ही अच्छी जानकारी, जिसमें हमको जानकारी दी थी श्री ध्यानेन्द्र यादव जी ने, जो कि गांव खेरली सैयद के रहने वाले हैं। अब आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश और उसके बाद करवाएंगे आपका मनोरंजन।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तो प्रियंका बहन, यह तो हमने हमारे किसान भाइयों का करवाया मनोरंजन। अब हमारे किसान भाइयों से चर्चा करते हैं, मक्का में नैनो डीएपी खाद का उपयोग हमारे किसान भाई किस तरह से करें और उन्नत पैदावार की जो नई तकनीक जो यह आया है, इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा हमारे किसान भाइयों से करते हैं।
1: बिल्कुल, मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जिसका उपयोग खाद्य, चारा और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में होता है। मक्का को अनाजों की रानी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बाकी फसलों के मुकाबले इसकी पैदावार सबसे ज्यादा है। और भारतीय कृषि में मक्का की जो भूमिका है वो बहुत ही प्रमुख है क्योंकि किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। अब बात करें नैनो डीएपी क्या है इसके बारे में, तो इफको नैनो डीएपी नैनो तकनीक पर आधारित डीएपी का एक विशेष रूप है जिसे पौधों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में, उर्वरक की प्रभावशीलता को बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मृदा और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इफको नैनो डीएपी की उपयोग दक्षता लगभग 85% एवं प्रभावशीलता पारंपरिक डीएपी से अधिक है क्योंकि इसके कणों का आकार 100 नैनोमीटर से कम होता है। इस कारण यह आयतन की तुलना में अधिक सतही क्षेत्रफल घेरता है एवं इसी विशिष्टता के कारण यह बीज या जड़ की सतह से या पत्तियों तथा अन्य छिद्रों के माध्यम से पौधों में आसानी से प्रवेश कर जाता है।
0: अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग किसान भाई किस तरह से करें। तो इफको नैनो डीएपी का उपयोग दो चरणों में किया जाता है। मक्का की फसल में इसका उपयोग बीजोपचार और पत्तों पर छिड़काव करके किया जाता है और मक्का की फसल में बुआई से पहले 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार कर बीज पर एक समान रूप से घोल की परत बनाकर उसमें को जैव उर्वरक में मिलाकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अब हमें आप इजाज़त दें, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। जाते जाते आपको मौसम बता देते हैं, आज का अधिकतम तापमान रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम रहा है 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कल भी मौसम इसी तरह रहने का के ही आसार हैं। और इसके साथ हमें विदा दीजिए। जय जवान,
1: जय किसान,
0: घनी घनी राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। ये आकाशवाणी अलवर का सरीस का चैनल है एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हरियाली और रास्ता का ये गीत, जिस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

पत्थर के सनम के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण व उद्घाटन समारोह किया गया, उस पर प्रसारित की जा रही है रेडियो रिपोर्ट।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राजस्थान के पचपतरा में 79,000 करोड़ की राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण किया गया। ये देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से देश के पेट्रोलियम क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 9 MMTPA क्षमता वाले इस रिफाइनरी परिसर में 29 प्रसंस्करण इकाइयां काम करेंगी। इन इकाइयों से लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के आरंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऊन से बना पट्टू ओढ़ाकर स्वागत किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस परियोजना के चरणबद्ध विकास की जानकारी दी। आपने इसे विश्व स्तर की नवीनतम पेट्रोलियम परियोजना बताया।
1: आज का दिन केवल राजस्थान और भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। विश्व भर में पिछले 10 वर्षों में बहुत कम ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज बनी है। इनमें से 2 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किए। 2016 में IOCL की पारादीप रिफाइनरी और आज यहां पचपादरा में HRRL रिफाइनरी जो कि HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को मेरा धन्यवाद, जिनका इस परियोजना को पूरा करने में सक्रिय योगदान रहा। सबसे बढ़कर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कर कमलों द्वारा आज इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में काफी चैलेंजेस आए, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां क्रूड या कच्चा तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए एक 490 किलोमीटर लंबी मुद्रा से एक डेडिकेटेड पाइपलाइन बिछाई। मंगला तेल क्षेत्र से एक 75 किलोमीटर की लोकल क्रूड पाइपलाइन बनाई गई। पानी के लिए 230 किलोमीटर लंबी एक अलग पाइपलाइन द्वारा नचना जलाशय से पानी लाने की व्यवस्था की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्पष्ट संकल्प था कि थार क्षेत्र को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यह परियोजना सितंबर 2013 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। अप्रैल 2017 से तत्कालीन राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी तब यह हालत बदली और यह परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य आमंत्रित मेहमानों का अभिनंदन किया।
2: माननीय

0: राजस्थान रिफाइनरी लोकार्पण के साथ 13,000 करोड़ लागत की जयपुर मेट्रो फेज 2, 34,000 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना का उद्घाटन किया गया। इससे शेखावटी क्षेत्र में जल अभाव से मुक्ति मिलेगी। 75 लाख आबादी निर्बाध जल प्रवाह से लाभान्वित होगी।
1: राम जल सेतु और यमुना जल परियोजनाएं राज्य के जल प्रबंधन को नई दिशा दे रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर दे रही है और सड़क विकास गांवों को शहरों से जोड़ रहा है।
0: इस अवसर पर ऊर्जा, नागरिक उड्डयन एवं रेल विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया गया।
2: रेगिस्तान का रत्न HPCL राजस्थान रिफाइनरी और चूरू सादुलपुर चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण कार्य। अब हम आप सभी की तालियों के उद्घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्साह के अतिरिक्त के साथ आग्रह करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी राजस्थानियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर,
0: समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न आयोजनों में उपस्थित हुए लाखों लोगों का अभिवादन किया। आपने इस उपस्थिति को सरकार के विकास कार्यों में सहभागिता बताया।
3: आज राजस्थान की धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि उसके बाद

0: चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है। भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है, चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के उत्पादों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
2: जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी।
3: बड़े निवेश प्रस्ताव रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार मिले और लगातार चल रही भर्तियां भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों से युवा हुनरमंद बन रहे हैं। शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, साइकिल, स्कूटी जैसी पहल बच्चों के सपनों को गति दे रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के साथ राजस्थान में महिलाएं नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं।
1: आकाशवाणी बाड़मेर द्वारा उत्पादित इस रेडियो रिपोर्ट के निर्देशक थे चमनलाल चौधरी और प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सैनी, वाचन स्वर मुकेश पाल सिंह।
4: ये आकाशवाणी जयपुर।
5: एफएम मेडिक 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 8:16 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या में रात्रि के 9 बजे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर, और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।

0: विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने

0: राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2030

0: हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता,

0: परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra. Several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi

0: recently emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India, where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे
0: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है
3: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28th फरवरी द सेकंड प्लांट ऑन 31st मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट गिवन द स्पीड विद व्हिच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोस 12 प्लांट्स अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे
2: आज दुनिया भर में भारत की सेमी कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है
0: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youths recruited across various departments of the government of Rajasthan. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: भरत व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बम्बई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कविराजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं, गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर, ये भरत व्यास के अपने विचार थे। सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम, अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया, छिप छिप कर मत देखो।

0: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो हमरी नजर भर जाएगी हमरी नजर भर जाएगी नजर भर जाएगी नजर।
1: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू, अंगुली

0: संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा, द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री दाल में काला, कारीगर नवरंग।
1: श्यामल

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीर जी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त।

रोशन के लिए आगरा रोड, सरदार मलिक के लिए रूप सुंदरी, नाग मोहिनी और सारंगा।

वसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सह्याद्री की, मौसी, गूंज उठी शहनाई

यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

कोई हो

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत।

0: संगीतकार भरत व्यास पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। शाम ढली और चांद निकल आया, मैंने पलकी मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर अंदाज था जुदा, हर अदा थी निराली, बहुत भा रही थी मुझे ये खुमारी। तेरे जलवों में खोया रहूं, तेरी पनाहों में सोया रहूं, तेरी बाहों में ही मेरी रात गुजरे, दिन जो भी गुजरे अब तेरे साथ गुजरे। न वक्त की परवाह है मुझे अब, न जिंदगी की फिक्र है, तू ही मेरी मंजिल है, मेरी सांसों में बस तेरा ही जिक्र है।

वो नूर की बूंद जो चांद से टूटकर बिखरी थी मेरे वजूद पर, अब तक भीग रहा है जिस्म मेरा उसी में, छाया है धड़कनों में उसी का सुरूर सा। चांद से मिलने चला था, तेरा चेहरा नजर आ गया, कहकशां तेरे कदमों पर बिछाने की ख्वाहिश जो की, सितारों में सिमटा तेरा हुस्न महफिल में छा गया। तेरे लबों की जुम्बिश, तेरी सांसों की हरारत, निगाहों में है मस्ती और अदाओं में शरारत। शोखी तेरे हुस्न की है सबसे जुदा, हर अंदाज लाजवाब है और आंखों में है वफा।

0: कल रात मेरे सिरहाने पर चांद का एक टुकड़ा बिखरा हुआ था। शायद ख्वाबों में आकर तुमने ही उसे रखा था। सुबह सवेरे जब नींद खुली तो गुलों की चादर बिछी हुई थी। शायद तुम्हारे कदमों की आहट यहाँ कैद हो गई थी। दरीचे से बाहर झांका तो आंगन में मोगरे के फूल खिले हुए थे। शायद तुम्हारी मीठी हंसी की गूंज इन्होंने सुनी थी। आज धूप की किरणें ज्यादा ही सुनहरी हैं। शायद तुम्हारी मखमली जुल्फों को छूकर ही वो यहां आई हैं। चांदनी को ओढ़कर जब तुम निकलती हो सरे शाम, सारे दिए जल उठते हैं और दिल पुकारता है बस तुम्हारा ही नाम।
1: न झटको जुल्फ से पा

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है छाया गीत में। तुम्हारी हसीन यादों का सफर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन्हा कर देता है, फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। तपता रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर तुम्हें सोचता हूं। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकाने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है कि हर रास्ता छोटा लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूँ फिर से उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों में समेटे।

एक रंग तुम्हारी निगाहों का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गालों का। उस रंग में रंगी हो तुम, उस रंग में रंगा हूं मैं, उस रंग में रंगी हैं हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी हैं जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी हैं ये वादियां, उस रंग में खिली हैं कलियां। कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मदहोशी का, कुछ सुर्ख सा।

0: आंखों से खींच कर तुम्हारे दामन को, तुम्हारी एक एक अदा को पलकों में कैद कर लिया। तुम्हारे हुस्न के साए में है अब मेरी मंजिल, तुम्हें देखकर तुम में ही मैं जी लिया। जब भी शाम आती है तुम्हारी खुशबू सी महक जाती है, जब भी सुबह होती है तुम्हारी सांसों में धुल जाती है। कभी मोहब्बत की आहटों सी तुम गूंज उठती हो, कभी मद भरी शामों सी बहक जाती हो, कभी गुनगुनी धूप बनकर सहला जाती हो, कभी चांदनी बनकर धड़कनों को बहला जाती हो। पास आती हो तो जिंदगी बन जाती हो, दूर जाती हो तो बंदगी बन जाती हो।
1: छोड़

0: दादी वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए जय हिंद।